एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। आज शनिवार है। शक संवत सन 1948 के भाद्रपद मास की सातवी तिथि तदनुसार 29 अगस्त सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगो विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत

0: किया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हरा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।

आज का चिंतन ये थी भक्ति रचनाएं। अब सुनिए देशकाल, अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको झरोका के अंतर्गत बता देते हैं आज के दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। छह बजकर 35 मिनट पर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भाग 295

एक बजे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तीन बजे मनचाहे गीत, संवाद मंजू द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता देशी कामले। तीन बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग, आई लव यू का भाग एक, मूल गुजराई लेखक प्रदीप सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानडे। और चार बजे आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गायिका दीपाली साहा से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुत तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत, 5 बजकर 30 मिनट पर तराने नए पुराने,

की कहानी काबुलीवाला का भाग दूसरा, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। रात 8:15 पर चित्रलोक, रात 9 आपके लिए और रात 10 छायागीत, आलेख एवं स्वर जी श्याम, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 चित्रपट संगीत मैटनी शो का पुनः प्रसारण।

अभी आपने सुना झरोका के अंतर्गत दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 295।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूँ। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: Sarıda.
1: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से वाई एम महात्रे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार पंडित जी।
3: जी नमस्कार।
2: आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं, फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है।
3: मैंने संगीत 7 साल की अवस्था
2: जी हाँ
3: में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर
2: वाह
3: जिसको आप भूल नहीं सकते
2: हैं। हाँ, गांधी जयंती की
3: जी। और सबसे पहले
2: जी
3: कैरकट्टे नागेश राव
2: अच्छा
3: मुंबई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे
2: जी।
3: उसके उपरांत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
2: अच्छा बहुत अच्छे,
3: इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल
2: जी
3: सीखा
2: जी।
3: उसके बाद मेरे गुरु बंधु श्री चिदानंद नगरकर
2: अच्छा
3: जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल थे, उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना
2: जी
3: तो मैं प्रभावित हुआ
2: अच्छा।
3: और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सिखा था स्वर्गीय पंडित एस एन रातनजनकर
2: जी हाँ,
3: और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा
2: जी हाँ।
3: और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी।
2: क्या बात है।
3: और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की
2: जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है
3: जी।
2: और जैसे आपने रातनजनकर जी से भी तालीम पाई है, रातनजनकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम
3: जी।
2: थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी, तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है
3: जी।
2: बड़े भाग्यशाली हैं आप।
3: खैर ये तो ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए
2: जी हाँ,
3: मिलता था गाना
2: हाँ,
3: उस्तादों का। लेकिन आजकल का जमाना ये है कि रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं
2: जी हाँ,
3: उसके जरिए काफी सुनने के लिए मिलता है
2: जी हाँ।
3: तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान
2: जी हाँ
3: उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था
2: जी
3: तो मैं काफी लोगों को सुना करता था
2: जी हाँ, जी
3: उस्तादों
2: हाँ।
3: को, तो उसमें उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान साहब उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप
2: आपके
3: कुछ मेरे गायकी में बहुत अधिक मिलती है
2: जी हाँ।
3: ऐसा लोग कहते हैं
2: नहीं वो सही बात,
3: हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के रतनजनकर जी के गुरु थे
2: जी हाँ।
3: तो कुछ ना कुछ बातें तो वहां से मिलती हैं आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना
2: जी हाँ
3: से था
2: जी हाँ,
3: इसलिए मैंने वो चीजें कुछ हासिल करने की कोशिश की।
2: आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार उनको ये ज्ञात होता है
3: जी।
2: तो पंडित जी पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन

0: या है, तो आपके दृष्टिकोण से हमारे राजदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं, क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं?
1: देखिए, ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है।
0: मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ
1: जी, जैसे भविष्य की सुना है, अलग है, और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं, वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे
0: जी,
1: हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ बहुत अधिक
0: है। अच्छा।
1: जी, और वो अगर सीखे तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोग से भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ ये है कि उनको काफी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं
0: जी, हाँ।
1: और सीखते दूसरी दूसरा घराना।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है
0: जी,
1: तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं
0: जी,
1: या उपशास्त्रीय संगीत,
0: हाँ।
1: या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है,
0: हाँ।
1: और एक ही जगह वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते
0: जी, हाँ।
1: इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए
0: जी, हाँ।
1: एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए वो बन नहीं पाती है। इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है। क्यों? कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है
0: जी, वो
1: कला उसका, वो पनप नहीं पाती है,
0: विकास नहीं होता।
1: विकास उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं, गुजर रहे हैं, कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें
0: जी,
1: तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड ले। मेरा कहना ये है
0: जी,
1: कि जब डेढ़ डेढ़ घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे
0: जी, हाँ।
1: और सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले डेढ़ घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह से गाने वाले जो है या बजाने वाले, वो डेढ़ घंटा तक एक राग को बरतना उनमें वो हाँ उतना धैर्य नहीं
0: है,
1: हाँ, ये कहिए। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड ले लेगा
0: जी,
1: और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छे तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे। और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं, बजाते भी हैं।
0: और पंडित जी, पाश्चात्य श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है?
1: 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक
0: जी,
1: है ना, गायन कला
0: जी, हाँ,
1: वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी
0: जी, हाँ।
1: फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में
0: आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए,
1: निरूपण मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया।
0: अच्छा।
1: इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड
0: जी, हाँ,
1: इन इंडियन म्यूजिक
0: जी, हाँ,
1: यहाँ से लेकर मैंने प्रेजेंट डे राग संगीत तक
0: जी, हाँ,
1: मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी 3-3 घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद किया
0: और सुना,
1: ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय मैं मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है
0: एक विशाल कला है, मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी हमारे संगीत के बारे में, जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उस बातें सब आपने बता दी हमारे श्रोताओं के लिए। आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।
2: सुविख्यात गायक दिनकर गायकिणी से YM महात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर कैकिनी का गाया सावन।

0: विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंट वार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाश

आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आप सभी के अपने कार्यक्रम नमस्कार अलवर में। श्रोताओं, हमेशा की तरह से मैं बहुत ही अच्छे से हूँ और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक कर रहे होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स का मज़ा ले रहे होंगे, अपने जीवन का मज़ा ले रहे होंगे, साथ में आने वाले त्यौहारों का मज़ा ले रहे होंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। साथियों, देखिए, अभी कल ही हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना कर चुके हैं और आज तारीख है 29 अगस्त। साथियों, 29 अगस्त क्या खास है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 29 अगस्त जो है वो पूरे राष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस क्या चीज़ है, क्यों मनाया जाता है, खेलों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ें इनसे हमें प्राप्त होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने जीवन में सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के प्रोग्राम के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, देखिए, जब बात कर रहे हैं 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के विषय में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर है क्या। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये हर साल 29 अगस्त को भारत में महान हॉकी के खिलाड़ी जो रहे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। खेलों का हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक विकास में अतुलनीय योगदान है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब साथियों, बात वही आती है कि मेजर ध्यानचंद जी है, उनके बारे में हम लोगों को आज के दिन ऑब्वियसली बात है कि जानना तो चाहिए, क्यों मनाया जा रहा है इस बारे में हम तभी जान सकते हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस को गहराई से समझने के लिए मेजर ध्यानचंद के जीवन और उनके योगदान को समझने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। वो 16 वर्ष की आयु में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। दिन भर की सैन्य ड्यूटी के बाद वो रात में चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। इसके कारण उनके साथियों ने उन्हें ध्यानचंद का नाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण युग था उनके समय में हॉकी का। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ध्यानचंद ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 14 गोल किए थे और 1932 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक है उसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 के बहुत बड़े अंतर से हराया था, जिसमें ध्यानचंद ने 8 और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। इसी तरह से 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था, फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया था। ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में शामिल होने और उच्च पद देने की पेशकश भी की थी, जिसे उन्होंने देशभक्ति के साथ अस्वीकार कर दिया। ध्यानचंद का बॉल कंट्रोल इतना अद्वितीय था कि नीदरलैंड में अधिकारियों ने यह जांचने के लिए उनकी हॉकी स्टिक ही तुड़वा दी थी कि कहीं उसमें कोई चुंबकीय धातु या गोंद इत्यादि तो नहीं लगाया गया है। तो साथियों, इस चीज़ों के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय खेल दिवस के विषय में और हम लोगों ने जाना कि मेजर ध्यानचंद कौन थे और राष्ट्रीय खेल दिवस उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब साथियों, बात आती है कि जब हम खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि खेलों का बहुआयामी महत्व क्या है। इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ जानकारी अवश्य करनी चाहिए। देखिए साथियों, खेलों का प्रभाव केवल मैदानों तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। अगर हम अपने शारीरिक और जैविक प्रभाव के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि नियमित खेल गतिविधियों से शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो बेहतर ढंग से ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों का लचीलापन और हड्डियों का घनत्व जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। ये हमारे सेलुलर और मस्क्यूलर विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को जब हम देखते हैं तो खेल शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे श्वेत रक्त कोशिकाओं का संचार जो है वो बेहतर हो जाता है और शरीर सामान्य संक्रमणों से लड़ने में सक्षम बनाता है। ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे खांसी जुकाम इत्यादि चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो मौसम बदलने पर छोटी मोटी चीज़ें बीमारियाँ होती हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। इसी के साथ साथियों, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव जो हैं उन पर भी खेलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं न्यूरोप्लास्टी और मस्तिष्क

स्वास्थ्य के विषय में तो देखते हैं कि खेल मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। इस स्मृति समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और तार्किक सोच में सुधार होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है। वहीं मानसिक बीमारियों से सुरक्षा के बारे में जब हम खेलों के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि अवसाद और चिंता से निपटने में खेल दवा की तरह से काम करते हैं। वो शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड वाले केमिकल्स जो होते हैं उनको संतुलित करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकीकरण में भी खेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वो कैसे करते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये गीत।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे कि खेलों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है, और खेल किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन में अच्छे इफेक्ट जो होते हैं उनको लेकर के आते हैं, किस तरीके से हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो साथियों, अब बात आती है सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकीकरण, इन चीज़ों के लिए खेल जो है वो किस तरह से उत्तरदायी होते हैं, किस तरह से वो एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, जब हम देखते हैं कि जाति धर्म और सीमा से परे की बातें जब हों तो खेल का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि खेल के मैदान पर केवल खिलाड़ी की क्षमता देखी जाती है, उसकी जाति या उसकी किसी भी प्रकार से पृष्ठभूमि को नहीं आंका जाता है। यह समाज में असमानता को मिटाने का एक सशक्त माध्यम है। वहीं जब हम देखते हैं कि जब कोई एथलीट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा फहराता है तो वो 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरो देता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, इसी वजह से राष्ट्रीय एकीकरण का काम भी खेल करते हैं, सामाजिक समरसता का काम भी खेल करते हैं। लेकिन साथियों, जिस तरीके से आज समय बदल रहा है, तो समय के बदलने के कारण हर चीज़ बदली है, बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आई हैं जो हर क्षेत्र में जीवन के हैं। तो अगर हम खेलों के बारे में भी देखते हैं तो आधुनिक समाज में देखें तो खेल भी इससे दूर नहीं है, इससे कोई इतर चीज़ नहीं है। और आज का जो समाज है वो भौतिक रूप से कम और डिजिटल रूप से अधिक सक्रिय हो गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है खेलों के लिए। और बहुत सारी ऐसी नई चुनौतियां उत्पन्न हुई है, अगर उनको जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है, वो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो यही आती है कि डिजिटल लत और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ये हमारे बच्चों में आज देखी जाती है। बच्चों में मैदानी खेलों के स्थान पर ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया ने ले लिया है। इसके परिणाम स्वरूप बचपन में ही मोटापा, कमज़ोर दृष्टि और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएँ जो है वो बढ़ रही हैं, और इसकी चीज़ों के मरीज जो हैं वो आप आज घर घर में देख सकते हैं। आप इस चीज़ को अपने स्वयं के घरों में भी महसूस कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों में महसूस कर सकते हैं कि आज 10-10 साल के बच्चों के आंखों पर चश्मे लगे हुए होते हैं। यद्यपि IPL और अन्य लीग के खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है, लेकिन कई बार अत्यधिक व्यवसायी दबाव के कारण खेलों की मूल भावना पीछे छूट जाती है। तो खेलों का व्यवसायीकरण जो है ये चीज़ अपने आप में एक खेलों के लिए चुनौती बनकर साबित हुई है। इसके साथ ही साथियों, डोपिंग और अनुचित साधनों का प्रयोग जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण बढ़ाने वाली दवाओं का जो बढ़ता उपयोग होता है, जो डोपिंग के अंदर दवाएं ली जाती हैं, तो एक खेल की निष्पक्षता और एथलीटों के दीर्घकालिक जो स्वास्थ्य होता है उनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अभी हमको लोगों को इन चीज़ों से पार पाना है। और देखिए, जब चुनौतियां आती हैं, जब संघर्ष आते हैं, तो हम संघर्ष करके आखिरकार इंसान उनसे पार पा ही लेता है। तो ये चुनौतियां भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इनसे भी पार पा लेंगे और इस सब चीज़ों के बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

तो साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, हमारे जीवन में खेलों के प्रभाव के बारे में। अब साथियों, इसके बाद बात आती है, हम लोगों का ये जानना भी आवश्यक है कि भारत में खेल की अवसंरचना और नीतिगत पहल क्या क्या हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने हाल ही के वर्षों में खेल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो इसमें आता है ना, वो आता है खेलो इंडिया यूथ एंड यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे कस्बों की छिपी हुई प्रतिभाएं जो हैं उनको खोजना है, उनको राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सके और अपने समाज को भी बेहतर बना सके। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के तहत देश के शीर्ष एथलीटों को विश्व स्तरीय कोचिंग, विदेशी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे ओलंपिक में भारत के पदक बढ़े हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है फिट इंडिया मूवमेंट। ये चीज है 29 अगस्त 2019 को शुरू किए गए इस अभियान का जो

उद्देश्य है वो प्रत्येक नागरिक को दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि सभी लोग खेलों का जो फायदा है वो अपने जीवन के अंदर उठा सकें। और भविष्य के रोडमैप को अगर हम लोग देखें तो समावेशी खेल संस्कृति का निर्माण करना है। भारत को एक वैश्विक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कदम उठाने होंगे। अगर हम उसमें सबसे पहले नंबर पर बात करें तो बात होती है प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य करना होगा खेलों को। खेल को सिर्फ अतिरिक्त गतिविधि न मान करके मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर अवसंरचना जो होती है, यानी कि देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूल में कम से कम एक सुसज्जित खेल का मैदान होना अनिवार्य होना ही चाहिए। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं के लिए अधिक संसाधन और उनकी सुरक्षा जो है उसको भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। तो साथियों, इन सब चीज़ों के बारे में तो देखिए बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत।

तो साथियों देखिए, बातें तो करने का बहुत सारा मन है, लेकिन अब बात वही हो जाती है कि हमेशा घड़ी की सुइयां ये इशारा करने लग जाती है कि आप सभी से विदा ले लें। तो जा रहे हैं देखिए इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से मुलाकात होगी इसी तरीके से, फिर से किसी और दिन किसी और नए विषय के साथ में। और तब तक के लिए आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि खेल केवल पदक जीतने या मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। 29 अगस्त का ये दिन हमको संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वयं को अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खेलों के मैदान से जोड़ें, क्योंकि एक फिट नागरिक ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। तो इसी चीज़ के साथ में आप सभी से विदा ले रहे हैं एक बार फिर से आने के साथ। तो अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अलवर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

0: अरिजीत सिंह और साथियों को आपने सुना फिल्म बेफिक्रे में। शब्द रचना रही जयदीप साहनी की और संगीत दिया विशाल शेखर ने।
1: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रीतम का संगीतबद्ध किया और अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी से। आवाजें रही रेखा भारद्वाज और तोशी रैना और साथियों की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: AR रहमान का संगीतबद्ध किया और प्रसून जोशी का लिखा ये गीत आपने सुना बैनी दयाल, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में, और फिल्म का नाम रहा गजनी।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420222।

शंघाई फिल्म से ये गीत आपने सुना नंदिनी शुक्ल, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। शब्द रचना रही कुमार की और संगीत से संवारने का काम किया विशाल शेखर ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कसूर से। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों को आपने सुना फिल्म कसूर में। शब्द रचना रही समीर की और संगीत दिया नदीम श्रवण ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा जो है वो आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चॉकलेट से। आवाजें हैं केके और साथियों की, शब्द रचना है प्रवीण भारद्वाज की और संगीत से संवारने का काम किया है प्रीतम ने।

तो साथियों, ये था आज का फिल्म संगीत। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं।

0: नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री

0: केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा, बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पूरी आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बातें फिल्मों की। विषय है फिल्मी गीतों में नदियां, नैया, माझी और किनारा। स्वर आलेख है अर्चना जैन और प्रस्तुत करता है शिव कुमार शर्मा।

नमस्कार। सागर की लहरें हो, दरिया की कलकल हो या दिल की धड़कन, तीनों के पास अपनी अपनी एक अलग भाषा है। गौर से सुना जाए तो ये जिंदगी के संगीत जैसा सुनाई देता है, जहाँ हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती नजर आती है, दरिया अपनी मंजिल की तरफ बहता है, मगर कभी कभी वो किनारे तक ना पहुंचकर लहरों में ही खो जाने को मजबूर हो जाता है।

जिंदगी भी ऐसे ही दरिया या बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती हुई, कभी किनारों को तलाशती हुई, तो कभी किनारों से आगे निकल जाने की जिद में सबको अपने भीतर समाती हुई बहते रहने को आमादा है, क्योंकि नदिया की तरह ही जिंदगी भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस चलते जाना है।

श्रोताओं, आज के हमारे इस सफर में कहीं एक दरिया है, एक सागर है, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में बिना ठहरे बस बहते रहना है। एक नाव है जिसका माझी उम्मीद की पतवार थामे हुए है। कहीं एक किनारा है जो जीवन दर्शन की तरह है। कभी कभी मंजिल कोई जगह नहीं होती, बल्कि सफर ही हमारा अपना किनारा बन जाता है।

दरिया हमें बहना सिखाता है तो नदियाँ आगे बढ़ना और माझी हौसला रखना। जहाँ वो केवल नाव नहीं चलाता, हमारी उम्मीदों को भी पार लगाता है। ऐसा ही रहा बंदनी फिल्म का ये मशहूर गीत, जो आज भी मन की गहराइयों तक उतर जाता है।

कहते हैं जिंदगी अगर एक सफर है तो हम सब उसकी धारा में छोटी छोटी नावें और लहरों के साथ बस बह निकलते हैं यूं ही दिल की नाव में।

जीवन का सौंदर्य अलग अलग रह जाने में नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने में है। जिस तरह ताल का जल नदी में, नदी का जल सागर में समाकर जाने कहां अपनी यात्रा पूर्ण करता है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम, सहयोग और समर्पण से पूरा होता है।

जीवन की नाव कभी शांत जल पर चलती है तो कभी तेज धाराओं से गुजरती है। ऐसे में एक माझी का भरोसा ही उसे किनारे तक पहुंचाता है।

कितना प्यारा संगम है ये जीवन की नाव से हम सब मुसाफिरों का, जहाँ लहरों के उतार चढ़ाव के बीच नाव में प्रेम और विश्वास रूपी नाविक हो तो हर भंवर पार कर जाते हैं। वेनिस की खूबसूरत नहरों में फिल्माया गया ये गीत ऐसे ही एहसास को बयां करता है।

जीवन रूपी नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए नाविक का धैर्य तब और मजबूत हो जाता है जब किसी का प्यार खूबसूरती के साथ जिंदगी संवार देता है। सुनिए यीशुदास की मीठी और मधुर आवाज से सजा ये बेहतरीन तराना।

देखा जाए तो दरिया की ये बड़ी खूबी होती है कि वो अपने भीतर ना जाने कितनी कहानियां समेटे होता है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, जितना गहरा उतरिए नए एहसास मिलेंगे।

हिंदी सिनेमा ने सागर को सिर्फ प्रकृति ही नहीं प्रेम की गहराई का भी सबसे सुंदर प्रतीक बनाया है, जहां वो पूरी जिंदगी का साथ निभाने का वादा भी बन जाता है।

जब सागर की लहरें किनारों से टकराती है तो लगता है कि जैसे दिल अपनी ही कोई बात दोहरा रहा हो और उसके किनारे जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का भाव भी जगाते हैं। सुनिए सागर फिल्म का किशोर कुमार और लता जी की खूबसूरत आवाज से सजा ये लोकप्रिय गीत।

नदी की लहरों पर डोलती एक नाव जिसके इर्द गिर्द घूमती दो धड़कनों की खामोश कहानी और सुंदर किनारा, ऐसे ही खूबसूरत दृश्यों के साथ फिल्माया गया ये साल 1998 की फिल्म दिल से का दिलकश तराना।

कभी कभी हम दरिया तक जाकर भी उसके पार नहीं जा पाते, क्योंकि प्रेम का सुंदर एहसास हमें खींचता है अपनी ओर। प्यार के इस खूबसूरत एहसास को बखूबी बयां करता साल 2016 की फिल्म बार बार देखूं का ये मधुर गीत।

प्यार अगर सच्चा हो तो सात समंदरों की गहराई को भी पीछा छोड़ते हुए वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ऐसे ही सुंदर भाव से जुड़ा ये मस्ती भरा तराना रहा साल 1992 में रिलीज फिल्म विश्वात्मा का।

नदी सागर किनारे और कश्ती जैसे रूपक हिंदी सिनेमा में हमेशा से गहरे प्रेम, जुदाई, समर्पण और जीवन के दर्शन को दर्शाने के लिए एक बेहतरीन जरिया रहे। ऐसे ही चुनिंदा कुछ नगमों के साथ आज के इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन। और इसके प्रस्तुतकर्ता रहे शिव कुमार शर्मा।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम बातें फिल्मों की। अगले हफ्ते होगी मुलाकात ऐसी ही खूबसूरत यादों और दिल को छू लेने वाले भावों से भरे बेहतरीन तरानों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

सूरज मेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के 84 विषयों के परिणाम घोषित। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मुलाकात की। पोप ने राजस्थान और भारत के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रीय खेल दिवस आज। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव

0: एफ के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ताशकंद पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने के लिए परिवर्तन योजना लागू की गई है। इसके तहत एनसीआर जिलों में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को BS6 या उससे बेहतर मानकों वाले वाहनों से बदलने का प्रावधान है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से भी बदला जा सकता है। इस योजना पर 9,585 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पात्र वाहन मालिकों को 5 साल तक वाहन ऋण पर ब्याज में 5% की बचत होगी। साथ ही 10 वर्ष तक रोड टैक्स तथा पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट भी दी जाएगी। राजस्थान सहित चारों संबंधित राज्यों ने इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। योजना के तहत 27 अगस्त तक 1,300 से अधिक लाभार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति की प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाजशास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी के विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जोधपुर में देश का पहला पैसेंजर ड्रोन तैयार किया जा रहा है। निजी ड्रोन टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना को राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान साझेदारी के तहत नीतिगत और प्रशासनिक सहयोग दिया है। ड्रोन की तकनीक के विकास में IIT जोधपुर भी सहयोग कर रहा है। जोधपुर स्थित अत्याधुनिक निजी प्रयोगशाला में ड्रोन के डिजाइन और अनुसंधान का काम तेजी से चल रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
1: ये पैसेंजर ड्रोन 150 से 200 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम होगा, जिससे 1 से 2 यात्री सुरक्षित एयर टैक्सी का सफर कर सकेंगे। इसका प्रोटोटाइप अगले 6 से 8 महीने में तैयार करने का लक्ष्य है। यात्री ड्रोन के अलावा लैब में विशेष स्टेल्थ तकनीक वाले ऐसे ड्रोन भी बन रहे हैं जो घने बादलों में छिपे रहकर निगरानी और रक्षा अभियानों को अंजाम दे सकेंगे। निजी नवाचार और सरकारी सहयोग से इस मॉडल से न केवल एविएशन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय इंजीनियरिंग छात्रों को ड्रोन निर्माण और डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मुलाकात की। इस अवसर पर IIAS के 520 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पोप के विशेष आशीर्वाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पोप ने कहा कि डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण और जनसेवा के लिए होना चाहिए। पोप ने राजस्थान और भारत के विकास और प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव पिछले साल जून महीने में IIAS के पहले भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है।

0: ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम खेलेगा भारत जीतेगा भारत रखी गई है। ये अभियान श्रद्धांजलि, खेल और गति के 3 स्तंभों पर आधारित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खेलों को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, सशक्त और आत्मविश्वासी राजस्थान के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में कई स्कूलों में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। पाली में राजकीय बांगड़ स्टेडियम परिसर में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। पाली के देसूरी नाल घाट सेक्शन में सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने घाट के खतरनाक और तीखे मोड़ों पर आधुनिक रोलर क्रैश बैरियर लगाए हैं। इससे बेकाबू वाहनों को चट्टानों से टकराने या गहरी खाइयों में गिरने से बचाने में मदद मिलेगी। देसूरी नाल अपने घुमावदार मोड़ों और ढलान के कारण लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना जाता रहा है। नए सुरक्षा इंतजामों से यहां सड़क हादसों में कमी आने और यातायात को अधिक सुरक्षित बनाने की उम्मीद है। डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर में राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेले की कल से शुरुआत हुई। मेले में नागौरी नस्ल के बैल, ऊंट और घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए अन्य राज्यों से व्यापारी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से मेले में 2 दिन की पशु प्रतियोगिताएं होंगी।
1: SDM कुसुमलता चौहान व मेला अधिकारी डॉक्टर बागुल दीपक शंकर ने झंडारोहण किया। मेले में शाम तक 644 पशु पहुंच गए। नागौरी नस्ल के बैलों के साथ ऊंट, घोड़े व भैंसों की खरीद फरोख्त के लिए राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से व्यापारी पहुंचे हैं। मेले में 2 दिन पशु प्रतियोगिताएं होंगी और तेजाजी मंदिर के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: उधर हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में भर रहे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस अब अमृत भारत के नए रैक के साथ संचालित होगी। इसके लिए रेलवे अगले महीने नया रैक जोधपुर भेजेगा। इस नए रैक में एसी और नॉन एसी कोच के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंडोर एक्सप्रेस पहली ऐसी अमृत भारत ट्रेन होगी जिसमें डिजिटल डिस्प्ले के जरिए यात्रियों को ट्रेन की गति और अगले स्टेशन की जानकारी मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट के 84 विषयों के परिणाम घोषित। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मुलाकात की। पोप ने राजस्थान और भारत के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रीय खेल दिवस आज। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। न्यूज़ आप सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था आरको ने। फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। ठिशकियाओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीत पर किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में कुमार के बोल थे, शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यही समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: जुगन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।

0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: वाह।
0: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखी। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं पिट जाऊंगा। नहीं

0: लेके कहा था? तू कहाँ थी अब तक?
1: घर पे ही थी। और कहाँ थी?
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
0: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

चंदा वर्कर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

मन का मीट की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीट को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम झोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओ, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं तो नहीं। आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया। तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर, और मस्ती मजाक भी करते थे। वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है,

0: पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया। तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर, और मस्ती मजाक भी करते थे वो, मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग। तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई, और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

बचपन मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: लेकिन सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोडकर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम

0: मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
3: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाए तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहते हैं सब

सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

0: तरह।
1: हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चीटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूं उसको।

रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं, पर अब और नहीं। मैं यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूं क्या जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रखकर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरी फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग, दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं, और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताए दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे? ये मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था। क्यों है ना, नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से। शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा। हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हां,

उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ धकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

0: सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनियां, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा, अभी तो कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।
1: आज

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया।

ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूँ। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूँ, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मूड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती

लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूँ। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूँ, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रख कर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा। अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर। अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों

इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को,

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं आवश्यक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले कार्यक्रम।
9: गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक, यानी तकरीबन 17 साल की। लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र, और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं

कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी, वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख, हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है, और तब तक शैलेंद्र निकल लिए। ये जो 1 घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए, और तकरीबन 40 के दशक की बात है। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था, और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे, और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में, जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है, और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। अब हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं, और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है, फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया, शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी, और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे, और बहुत जरूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपए थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपए दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है, कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के 2 गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी, और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए आदमी वही है जो चलता जाए, एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में 2 बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में।

बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहां आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीव देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहां पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सलील चौधरी थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, नवेंदु घोष थे, और बिमल रॉय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनी, और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी, और इस फिल्म में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है, तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे,

बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए और ख्वाजा अहमद अब्बास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नरेशन किया। और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थीं कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

ये जो आवारा का गाना है ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज आ रहे हैं जहां पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबुमुरोव हमदानोव। बोबुमुरोव हमदानोव राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में, जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बोबुमुरोव के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। सन 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा

था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे दिलचस्प अंतरा है वो है, होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतने आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अनियोक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

करता हूं। तो उनको लगा ये क्या है, तो उन्होंने माचिस दी और माचिस पर उन्होंने ट्यून बजा के बताई, और जब ट्यून बजा के बताई तो शैलेंद्र ने वहीं जुहू बीच पर पूनम की रात में दो लाइनें लिखी और कहा कि जाओ अंतरे तुमको बाद में मिल जाएंगे। वो दो लाइनें थी, खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। अब जरा सोचिए कि खोया खोया चांद तीन ही वर्ड्स हैं, है ना, खुला आसमान दो ही वर्ड है, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको, मस्ती भरी हवा जो चली, ये जो कमाल है ये। और सिचुएशन जब पता चलती है तो गाना सुनना जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।

तो भाई ये शैलेंद्र के गानों की कहानियां हैं। बम्बई जब शैलेंद्र आए तो वो माटुंगा में वर्कशॉप में काम करते थे और परेल में रेलवे के एक छोटे से दड़बे नुमा क्वार्टर में रहते थे। उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्वाब था कि इस बम्बई शहर में अपना एक घर होना चाहिए और अरब सागर के किनारे बसा आसमान छूता शहर बम्बई, और ये शहर जो कि सिकुड़कर जीता है, कम जगहों में जीने की आदत है, यहां ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर, पुलों पर, टैक्सी में, मैदानों में, रेलवे स्टेशनों में, जहां जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। शैलेंद्र का ये ख्वाब पूरा हुआ था 1960s के जमाने में, अपना घर बनाने का ख्वाब। 1960 में उन्होंने लिंकिंग रोड बैंड्रा में अपना एक घर बनाया, बंगलो बनाया, वो आज भी मौजूद है। अगर आप लिंकिंग रोड पर जाते हैं तो वहाँ एक शैलेंद्र चौक है, शैलेंद्र चौक वाली गली में अंदर जाएं तो आपको रिमझिम मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ जाके माथा टेक के आया। रिमझिम, वहाँ लिखा है शंकर शैलेंद्र और लिखा है रिमझिम। रिमझिम इसलिए क्योंकि बारिश ने उनका करियर बनाया, बरसात फिल्म ने, और बारिश उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम रिमझिम रखा हुआ है। बहुत जर्जर हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत बेमिसाल जगह है। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने काम करने के लिए सांताक्रूज में एक फ्लैट और लिया था जिसको बापू निवास कहा जाता था। ये जो बापू निवास है ये बड़ी करामाती जगह थी क्योंकि यहां एक तरफ गुलजार मौजूद होते थे, दूसरी तरफ देबू मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मतलब ये एक तरह से घेटो था। और गुलजार साहब ने कहीं लिखा है कि बापू निवास जाओ तो पता चलता है कि कोने में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के टोटे हैं, अंडरवियर्स और टॉवल्स सूख रही हैं। हर आदमी वहां जा सकता है, हर आदमी वहां रह सकता है और किसी के आने पर कोई रोक नहीं है। इतनी भब्बड़ के बीच थोड़ी देर वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने गाने वहां पर लिखा करते थे। बापू निवास में शैलेंद्र ने अपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, ये जगह आज भी मौजूद है, हालांकि अब ये शैलेंद्र के पास नहीं है। एक कमरा, किचन और बरामदे वाला ये घर बापू निवास। घर का जो ख्वाब है उस पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही क्यूट और स्वीट गाना लिखा है, वो सुनते हैं।

0: इकबाल सिंह ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करते थे और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें गोरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को एल्विस पसंद था तो उन्होंने एल्विस को अपना लिया और एल्विस की स्टाइल में गाना गाने लगे। जब इकबाल सिंह सेठी को शैलेंद्र का लिखा अंग्रेजी गाना गाने को कहा गया, उन्होंने गा लिया, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की इजाजत तो थी नहीं, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि भाई आपने ऐसे बिना इजाजत के फिल्म में काम कैसे कर लिया। लेकिन ये जो गाना है ये है ओ ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे, रॉकिंग राइट ओवर माय हार्ट, यू हैव सेट मी अ फायर एनीवे, यू आर टू गुड इन योर आर्ट। ये शैलेंद्र ने अंग्रेजी गाना लिखा है।
1: ब्यूटीफुल बेबी ऑफ ब्रॉडवे।

ये अंग्रेजी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, शैलेंद्र ने बहुत मजाकिया गाने भी लिखे हैं और ये अंग्रेजी गाना भी उनका एक कमाल है। बल्कि एक गाना है अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, उसमें वो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। वो गाना आज मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, पर उसको आप कभी सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन तमाम भाषाओं के सेंटेंसेस आते हैं। एक बार ये हुआ कि शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का अपना आपस में एक वादा था कि हम साथ काम करेंगे, हमेशा एक साथ काम करेंगे, जब भी हमें कोई फिल्में मिलेंगी तो गाने आप लिखोगे और ये एक हमारी टोली जो है हम उसको हमेशा निभाएंगे। लेकिन एक फिल्म आई कॉलेज गर्ल, जिसमें पता नहीं क्या वजह थी कि शैलेंद्र की बजाय शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कृष्ण को साइन कर लिया। अब शैलेंद्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई ये वादा खिलाफी हो गई और मेरी बजाय किसी और से लिखवा लिया, तो वो बहुत नाराज हो गए। और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने देखा कि शंकर जयकिशन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, और बेरे से कहा कि जाओ उसको दे आओ। तो ये नाराजगी थी और शंकर जयकिशन ने इसे एक गाने में बदल दिया, प्रॉपर गाने में बदल दिया। तो आम जिंदगी की ये घटना जो है ये रंगोली के गाने में बदल गई, ये गाना सुनिए।

0: दुनिया।
1: और अब शैलेंद्र और नवकेतन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड की बात करते हैं। गाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उसके लिए गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को चुना गया था, और हसरत जयपुरी ने एक दो गाने लिखे भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था इस फिल्म के हीरो के बारे में जिसका यहाँ जिक्र करना या उसे बोलना बहुत अशालीनता हो जाएगी, तो उनको फिल्म से निकाल बाहर कर दिया गया था। और शैलेंद्र जी के पास गए थे विजय आनंद और देवानंद, और उन्होंने कहा कि आपको गाइड फिल्म के गाने लिखने, तो उन्होंने कहा सिंस आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस मैं डबल पैसे लूंगा, और उन्होंने डबल फीस चार्ज की थी। लेकिन गाइड के जो गाने उन्होंने लिखे हैं, एक एक गाना इतना कमाल है। सबसे पहले मैं मुसाफिर जाएगा कहां की बात करना चाहता हूं। अगर आपने गाइड फिल्म देखी हो तो इंटरमिशन के भी एक घंटे बाद एक दृश्य आता है जहां रोजी जेल में राजू बंद है और उससे मिलने जाती है, और वहां वो ये कहती है कि राजू तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा, काश मैं तुमको बचा पाती, और कोई बात नहीं ये वक्त बीत जाएगा और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो राजू जेल की सलाखों को पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी नए सिरे से शुरू करेंगे जीवन। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से शैलेंद्र ने इस गाने को उगाया था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। मुझे ये लगता है कि वहीं राजू ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना है, उसे ना तो रोजी के पास लौटना है ना अपने घर अपने गांव अपनी माँ के पास लौटना है। और जब वो जेल से छूटता है, और उसके बाद अगर आप इस गाने को देखें, गाइड फिल्म शुरू इस गाने से होती है, और जब आप देखें तो सबसे पहले राजू का सूटकेस गिरता है, रोजी की तस्वीरें गिरती हैं, उसके सूटकेस छूट जाता है, उसके बाद चप्पल छूट जाती है, उसके बाद कपड़े छूट जाते हैं, फिर वो कभी किसी बस में लटक के जाता है, कभी किसी ट्रक पर जाता है, और फिर एक जगह थक के लेटा हुआ होता है और एक साधु उसको रामनामी चादर उड़ा देता है। और

वहां से वो साधु मान लिया जाता है और फिर जो गाइड का कंफ्लिक्ट है वो शुरू होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि एस डी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुम्हें चोलो जाइबारे कोबे आईबारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था। और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का। वो है, तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां, क्यों नाचे सपेरा। क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गाना जिंदगी की क्षणभंगुरता, रिश्तों के खोखलेपन, समाज और संसार की सच्चाइयों को उजागर करता है। इसका एक अंश सुनते हैं।

गाना, और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आजादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है, और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है। ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था, और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए जयपुर चले गए और उन्होंने एसडी बर्मन से कहा कि गाना जल्दी भेजिएगा। तो एसडी बर्मन ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है और उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

ब्राइड ऐसी फिल्म है जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं। बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया। एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों गाने आएंगे, बैक टू बैक आते हैं। जब वो मुंह से छल किए जा होता है और मुंह से छल किए जा जैसे खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में फंसे हुए हैं और वहां पर क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। एक ही ट्यून पर दोनों गाने हैं और वो भी दोनों गाने बहुत ही कमाल के गाने हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र के गानों के बनने का हुआ। यह था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लेख टंडन एक दिन फेमस तारदेव में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे, रिहर्सल

चुकी थी और लता जी के आते ही गाना रिकॉर्ड हो जाना था, लेकिन तभी स्टूडियो में राज कपूर का फोन बजा और राज कपूर ने जयकिशन को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। अब ये हुआ कि उन्होंने फोन पर ही पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना सुना, वो गाना था काटे न कटे रैना, और जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने कहा ये गाना मुझे दे दो, इस गाने पर मेरा हक है, तुम लोग दूसरा लिख लो। अब गाना नहीं है और लता मंगेशकर आने वाली हैं। अब लेख टंडन की हवाइयां उड़ रही थी कि लता जी आएंगी तो क्या करेंगे। लता जी आई भी और फिर ये कहा गया कि भाई गाना तो था लेकिन अब नहीं है, अब गाना लिखना पड़ेगा। तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे गाने रिकॉर्ड करके आती हूँ, तब तक आप लोग गाना लिख लो। अब ये हुआ कि शैलेंद्र को लेख टंडन लेके गए आरे कॉलोनी, वहां उनको खाना दिया और कहा कि भाई यहाँ लिखो, तो उन्होंने खाना खा लिया लेकिन गाना नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नेशनल पार्क चलते हैं, नेशनल पार्क में घूमे, वहां पर भी गाना नहीं हुआ। अब लेख टंडन को लगा कि आज मर गए, क्योंकि लता जी जब आएंगी और दोबारा गाना नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो जब वापस लौटे तो देखा लता जी की कार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो लेख टंडन कहीं जाके छिप गए। उन्होंने कहा तुम ही सामना करो, मैं तो भाई इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तो लेख टंडन छुप के देख रहे थे कि स्टूडियो के केबिन में शैलेंद्र लता जी के पास गए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लेख टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि मेरे से गाना हुआ नहीं और मैं ये गाना बाद में लिख दूंगा और लता जी की डांट खाएंगे। पर जब उन्होंने स्पीकर का PFL दबा के सुना कि अंदर बात क्या हो रही है, तो लता जी की आवाज आई, दो ही अंतरे होंगे ना शैलेंद्र जी, यानी लता जी के सामने बैठ के उन्होंने एक झटके में गाना लिख दिया वहां पर, और ये गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।

जरा सोचिए कि ये गाना जो शैलेंद्र ने एक झटके में ऐसे लिख दिया जैसे कहीं से याद करके आए हों, इस गाने के जो अंतरे हैं वो क्या कमाल हैं। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, ये एक अंतरा है। दूसरा अंतरा है जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार तरीके वाला गाना और ऐसे एक झटके में लिख दिया, ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है। और जरा सोचिए कि जो पीछे की कहानी है ये इन गानों को ज्यादा नायाब बनाती है, और शैलेंद्र की जो लफ्जों की कारीगरी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभारती है। 1948 में जब राज कपूर आग बना रहे थे तो इंदर राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने तय किया था कि इसे वो बनाएंगे नरगिस के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों को ऑफर किया, देवानंद को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। उत्तम कुमार को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। राजेंद्र कुमार राजी हुए, नरगिस की जगह पर वैजयंती माला आई और घरौंदा की बजाय इस फिल्म का नाम रखा गया संगम। संगम राज कपूर की बहुत बड़ी फिल्म, दो इंटरवल वाले इसके वर्जन होते थे। और अभी पीछे जब राज कपूर फेस्टिवल NFAI ने किया था तो दो इंटरवल वाला वर्जन रिलीज किया गया था और वो हमें टॉकीज में देखने मिला था। क्या कमाल की ये फिल्म है। और जरा सोचिए कि इस फिल्म में शैलेंद्र, यहां जो पक्ष है अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैलेंद्र के भीतर बैठा एक स्त्री मन। शैलेंद्र एक महिला की व्यथा को बहुत खूबसूरती से गानों में उतारते रहे, और तीन गानों की मैं बात करूंगा जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है ओ मेरे सनम। ओ मेरे सनम जो है वो एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री जिस पर उसके पति को शक है, फिल्म की क्लाइमेक्स में जब ये गाना हो रहा होता है तो ये गाना जैसे अपनी सारी बातें कहता है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, ओ मेरे सनम। और यहां शैलेंद्र आगे लिखते हैं कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ये शैलेंद्र का एक स्त्री मन है।

शैलेंद्र की स्त्री मन की बात हो रही है। कुछ और गानों का जिक्र करते हैं। जागते रहो के एक गाने में वो एक स्त्री की तमन्नाओं को लिखते हैं। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, प्याज खिड़की खुली मत छोड़ो, ये गाना। और दूसरी तरफ एक और गाना है जिसमें वो कहते हैं कि एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, ये भी कितनी सुंदर लाइन है। और इसी तरह से बंदिनी के एक गाने में वो लिखते हैं कि मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात्रे सागर, कैसे चलूं उस पार। ये क्या कमाल का गाना है। वो पंछी प्यारे सांसकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। पर एक ऐसा गाना है जो इन तमाम गानों पर भारी है और ये फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका गाना है अजीब दास्तां है ये। इस गाने का बैकग्राउंड ये है कि हीरोइन जो है वो नर्स है मीना कुमारी, और अचानक वो ये पाती हैं कि डॉक्टर साहब कश्मीर गए तो उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है और शादी की पार्टी हो रही है। मीना कुमारी की तो सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां पर वो ये गाना गाती है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

एक और गाना जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाता है, और वो गाना है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। इस फिल्म में ये है कि जो पति है उसकी मृत्यु होने वाली है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और पत्नी के दिल के भीतर तूफान मचा हुआ है, और वहां वो गाती है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की रहना। वहां वो जो लाइन जो है, शैलेंद्र ने अल्फाज का खेल किया है, कल का डरना काल की चिंता दो तन है मन एक हमारे जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये शैलेंद्र हैं।

1964 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हो रहा था तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड साहिर लुधियानवी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये अवार्ड उन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया के लिए दिया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर मंच पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस अवार्ड के सच्चे हकदार शैलेंद्र हैं, जिन्होंने बंदिनी के लिए मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसा गाना लिखा है। और साहिर ने ये कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत है और ये भी उन्होंने कहा कि शैलेंद्र असली गीतकार हैं, हम सब तो बस शायर हैं। बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी बांग्ला के एक बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं जो जेलर थे, उनका नाम था जरासंघ, और उनकी कहानियां हमेशा कैदियों पर केंद्रित होती थी। बंदिनी भी कैदी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिससे एक मर्डर हो जाता है, जहर दे देती है वो। तो ये फिल्म थी और इस फिल्म में एस डी बर्मन ने एक बहुत ही सुंदर कजरी बनाई थी, निबुआ तले डोला रख दे मुसाफिर।

0: कितना सुंदर गाया दीपाली ने, हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर। अब हम मधुमती की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुमती बिमल रॉय, सलील चौधरी और शैलेंद्र की टीम का एक कमाल थी, और इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे किस्से हैं, जैसे सुहाना सफर और मौसम हसी गाना बन रहा था तो सलीलदा और शैलेंद्र खंडाला घाट पर घूमने चले गए थे। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए यूं कर रहा था, हुर्र। और आप ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर्र हुर्र जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेदिए गहरा बात जरा सी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है। जागते रहो के बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है और सलीलदा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमती के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलीलदा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायास ही शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंतर फेरू

और अब उस फिल्म की बात जो शैलेंद्र ने बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ एक और बात बताएं कि परख के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग भी शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये एक इकलौती फिल्म है जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे। बिमल रॉय

यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, पांच लंबी कहानियां, जिसमें एक कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। पर शैलेंद्र नहीं माने और उन्हें वो फिल्म बनानी ही थी। पर इस फिल्म को बनाने का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट रहा। जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत स्कैम किया और अनायास बिना बात के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। फिल्म बनने में बहुत देर हुई, ओवर बजट हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए। कहते ये हैं कि शैलेंद्र का बहुत दिल टूट गया था इस फिल्म को बना के। हालांकि उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था और उनकी बेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र रिकवरी वो 2 साल में आराम से कर लेते, जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी, तो वो जो भरपाई नुकसान की

0: करवा दिए, फिल्म बनने में बहुत देर हुई, ओवर बजट हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए। कहते ये हैं कि शैलेंद्र का बहुत दिल टूट गया था इस फिल्म को बना के। हालांकि उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था और उनकी बेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र रिकवरी वो 2 साल में आराम से कर लेते, जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी तो वो जो भरपाई नुकसान की थी वो 1-2 साल में कर लेते, लेकिन तब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। तीसरी कसम के लिए उन्होंने एक बेमिसाल गाना लिखा था, उसको सुनते हैं।
1: लड़का

गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची, उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहर ही छोड़ दी, पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।

ये शैलेंद्र का लिखा आखिरी गाना था और ये वो दौर था जब शैलेंद्र की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी और 14 दिसंबर 1966 को जब शैलेंद्र को एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो राज कपूर के घर के सामने से गुजरे और राज कपूर ने उन्हें आखिरी बार देखा और ये कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे कविराज और हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन 14 दिसंबर को शैलेंद्र ने अलविदा कह दिया। राज कपूर के जो बहुत ही अजीज लोग हैं वो इसी तरह से छूटते चले गए थे। जैसे मुकेश गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज चली गई, कविराज शैलेंद्र गए तो वो बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। केवल 43 बरस की जिंदगी, 17 साल का करियर और ये तो एक घंटे का प्रोग्राम है, पर अमूमन मैं शैलेंद्र के गानों की जो कहानियां हैं वो 3 घंटे तक सुनाता हूं। आज की ये महफिल इतनी ही, जाहिर है कि बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी और कहानियां कही जा सकती हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं। एक ऐसा गीतकार जिसने हमारी जिंदगी के बहुत सुनहरे पलों को बांटा है, हम विविध भारती परिवार की ओर से शैलेंद्र को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आज का सृजन भारती कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय ब्रह्मात्मक जी क्या कहते हैं।
1: शैलेंद्र के यहाँ लोक बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, चाहे वो लोकगीत के परंपरा हो, किस्से कहानियां हो, उसके अलावा भक्ति काव्य की निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा से नहीं लेते हैं, वो निर्गुण परंपरा से चीजें लेते हैं। अध्यात्म बहुत है उनके कविताओं में, उनके गीतों में, सब जगह है। जो 26 साल से पहले की उनकी उम्र है, जहाँ उनका शैशव है, जहाँ उनकी जवानी है, जहाँ वो काम करते हैं रेलवे में, 8 साल मशीन के तानपुरे के साथ में कविता करता रहा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उन्होंने खुद लिखा है। तो मशीन का तानपुरा, ये शिमली अपने आप में कैसी लगती है। और ये उनके टीचर ने कभी कहा था, जब वो मथुरा छोड़ के आ रहे थे इधर, तब उन्होंने कहा, क्या तुम अब मशीनों को सुन के गीत लिखोगे। उनके सारे गीत चरित्रों के हिसाब से लिखे गए हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए हैं, और गीत संवादों का काम करते हैं।
0: लीजिए प्रस्तुत है जानी मानी गायिका दीपाली सहाय के विचार गीतकार शैलेंद्र के बारे में।
3: शैलेंद्र के प्रेम में कोई गायक या गायिका नहीं है जो उनके प्रेम में नहीं है। और हम प्रेम शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सिंगिंग में धुन बनाना और गाना लिखना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, पर ये उनका जो सपना है, धुन बनाने वाले का और गाने लिखने वाले का जो सपना है, वो पूरा करता है एक गायक या गायिका। और जब तक कि हम लोग उस सपने को समझेंगे नहीं, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और शैलेंद्र हर सिंगर के लिए वो इंस्पिरेशन है। और मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है कि धुन बनाने से ज्यादा कठिन है उस सिचुएशन पर कुछ लिख देना। क्योंकि आप अगर देखिए, आज अगर तेरे पास में हिट है तो वो उसके शब्दों की वजह से लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास, सिंपल सी भाषा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब लिरिक्स अगर नहीं हो गाने में और उसमें कुछ संदेश नहीं हो, हर कोई संगीत नहीं समझ सकता है, पर भाषा के आते ही उसको एक मतलब मिल जाता है। और वो मतलब लेकर आते हैं हमारे लिए शैलेंद्र। और हम क्योंकि बिहार से हैं और हम बहुत छोटे थे जब हम उनके लिखे गाने सुनते थे, और फिर बड़े हुए और भोजपुरी के उनके गाने हमने भी कवर किए उनके गाने, तो शैलेंद्र के लिए मेरे अंदर जो है वो मेरे लिए बोल पाना नहीं होगा आसान। हम गा के जरूर कुछ कहना चाहेंगे।
2: बिल्कुल,
3: और एक गाना जो बहुत दिल के मेरे करीब है,

0: दोस्तों, सृजन भारती का ये अंक केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। लीजिए, प्रस्तुत है दर्शकों के बीच उपस्थित गीतकार डॉक्टर सागर के विचार।
1: शैलेंद्र मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है। मैं हैरत इसलिए बोल रहा हूँ कि शैलेंद्र का जन्म हुआ रावलपिंडी पाकिस्तान में।

0: और वहां से वो आ जाते हैं मथुरा, जिस कविराज की अपब्रिंगिंग ब्रज भाषा की है। और ये हैरत नहीं तो और क्या है कि चलत मुसाफिर मोहली अरे पिंजरे वाली मुनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया,
1: क्या बात है।
0: और शैलेंद्र रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, ब्रज भाषा में बड़े हो रहे हैं, पैदा पाकिस्तान में हो रहे हैं। जो उनका रूट है आरा का, वो किस तरह से शायद उनकी माँ बोलती होंगी वो भाषा और माँ से वो जबान आई होगी।
1: उनके घर में बोली जाती थी
0: शैलेंद्र, बाज भी कपूत भी पपीहा भी,
1: बाबा
0: कहीं बाज की तरह भी होते हैं और पपीहा और कभी कबूतर हो जाते हैं, वो इतने विविध रंग हैं। शैलेंद्र मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है। तो मैं इसी के साथ बात खत्म करता हूँ।
2: तो ये थी सृजन भारती के अंतर्गत शैलेंद्र के 103 बरस होने पर उनके गीतों और जीवन की कहानियां, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान का। सृजन भारती के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन किया तेजश्री कांबले ने। इंजीनियरिंग टीम किरण बंग, समृद्धि नायक, अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब अपनी इस रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम बोल रहे हैं विविध
3: FM बैंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।

0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
3: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। आइए सुन लेते हैं ये कुछ आवश्यक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग क्या करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

गाते रहना। अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने बयान में कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी युयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। श्री मोदी ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्रीय स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सदुर जपारोव के निमंत्रण पर वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन के साथ मतदाता जागरूकता और निर्वाचन संबंधी तैयारियां भी जारी हैं। ब्यावर में देलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने वोट की आकृति की मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया। पाली में नगर निगम के 65 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए 5 जोन में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी खर्च की दर सूची जारी की है। नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपए और नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। सोशल मीडिया प्रचार और अन्य प्रचार सामग्री का खर्च भी चुनावी व्यय में शामिल होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम खेलेगा भारत जीतेगा भारत रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अजमेर के कई स्कूलों में अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में बैडमिंटन, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताएं हुई। MSJ खेल मैदान में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नेदरलैंड्स के बीच आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वें स्थान पर रहने पर भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने गुरुवार को एम्स्टरडैम में जर्मनी को 3-1 से हराया था। वर्ष 1974 में पहले विश्व कप में चौथे

स्थान पर रहने के बाद से ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में केवल एक मैच गंवाया। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने से शुक्रवार को कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। ये मॉनसून के दौरान प्रदेश में पहला सूखा दिन रहा। बारिश नहीं होने और तेज धूप के कारण कई शहरों में तापमान बढ़ा। जयपुर, टोंक और अलवर सहित 15 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की कमजोर गतिविधियों से प्रदेश के 17 जिलों में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। पाली में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। जालौर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में भी कम बारिश वाले जिलों में शामिल हैं। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सितंबर के पहले सप्ताह में नया मौसम तंत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 से 5 सितंबर से प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया। खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल के सरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे, क्या तितली पकड़ में आती थी। वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने जमाने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे जरा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है। हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता को फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं, ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो जरा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के ज़माने में भी, तो ज़रा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को, याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए, और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है। कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधले नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे। तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अभी हम आपको कागज के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

सुन रहे थे आप कागज के फूल फिल्म का गाना, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, गुरुदत्त और वहीदा रहमान। श्रोताओं ने सही बताया है और गीता दत्त की आवाज थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहली बूझिएगा, फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नजर के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ तितली से प्यार तो है, हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, जब वो फूल पर आकर बैठती हैं तो हम उसे निहारते जरूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है। बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़े, और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन। चाहे तो आप गीतकार का नाम भी पूछ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बच गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं और तब तक आपकी टिप्पणी आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था, बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये, तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं

खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम, खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहाँ तितलियाँ बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताज़ा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक लिया।

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाए हों फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफ़र, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियाँ हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है फिल्म

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको बूझना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था, इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

0: President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में

0: भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
4: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है

0: गुट निरपेक्षता की विरासत आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
2: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हो

2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज फिल्म चौदहवीं का चांद।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये है, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वच कामले, सुषमा वच कामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहर गज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती।

0: नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
1: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
2: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
1: मेरा सिर।
2: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
1: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
2: देखो जरा, देखो तो।
1: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
2: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
1: क्या? मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं।
2: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
1: क्या देख लिया तू? हैं?
2: हैं? ये तुम्हारी कमीज और क्या?
1: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
2: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
1: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया।
2: अरे क्या मिल गया, क्या मिल गया?
1: ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
2: ये कोई सबे है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे?
1: और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राय लो, रसोई में जाओ।
2: मेरी समझ में नहीं आता, आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है?
1: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
2: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
1: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
2: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
1: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
2: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
1: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
2: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इंसान को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है, अखबार पढ़ेंगे। पढ़ो, बैठ कर अखबार।
1: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
2: अरे क्या है, क्या है?
1: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
2: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
1: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या सो रही थी?
2: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
1: क्या कहा तुमने?
2: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
1: चाचा मर गए। चाचा अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
2: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
1: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
2: क्या?
1: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
2: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
1: भूल गई? खाना खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है बहाना।
2: अब करना क्या है वो बोलो।
1: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
2: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
1: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
2: जी गलती हो गई बस।
1: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
2: तो गलती सुधार लो।
1: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
2: बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
1: साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
2: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
1: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
2: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
1: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
2: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा?
1: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
2: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे,

0: तो की सीधी एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
1: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
0: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए है?
1: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
0: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
1: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
0: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट कूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
1: अरे अरे, मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इस पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ, जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं, हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
0: अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
1: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
0: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
1: चप्पल टूट गई है।
0: टूट गई? किसने तोड़ी?
1: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पाँव में आएगी?
0: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
1: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं, क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
0: उफ़, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो, जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
1: वो
0: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
1: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। उधर
0: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
1: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
0: अरे इसके फीते कहाँ गए भाई?
1: ओहो, अब मुझे क्या मालूम,
0: कल तो थे ना।
1: चूहा ले गया होगा।
0: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
1: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
0: अब तुमने मुझे दीवाना कहा है?
1: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
0: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
1: हाँ चाचा, कल मामा, परसो मोसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, मनोहर लाल की धर्मशाला।
0: मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
1: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
0: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
0: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो, जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
1: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
0: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
1: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
0: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं, बल्कि तुम्हारी ये पकपक है, पकपक।
1: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
0: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
1: अरे शादी के पहले तो कहते थे रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
0: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
1: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
0: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
1: तुम्हें मिठाई लेने जाना है,
0: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया, मर गया, चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
1: देखो मेरे कपड़े, कपड़े वपड़े तो ठीक है ना?
0: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।

0: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
1: मैं जा रहा हूँ।
2: मौसी मौसी मौसी कहाँ हो तुम? मौसी
1: हाँ! अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं
2: मौसी क्या आप? हाँ हाँ हाँ मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
1: भाई ये तो बताओ ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
2: महादर जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
1: वो क्यों?
2: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
1: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
2: मौसी कहाँ है लेकिन?
1: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
2: आज से क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
1: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी कहाँ है बताइए ना।
1: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
1: ओ हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
2: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
1: Then you should not marry, because marriage is a biggest joke.
2: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
1: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
1: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
1: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
2: enough. बहुत सुन लिया आपका मैंने।
1: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
2: घर मेरी मौसी का है।
1: और तुम्हारी मौसी मेरी है।
2: ऐसा आप समझते हैं?
1: क्या मतलब?
2: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
1: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
1: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
2: मौसा जी,
1: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
1: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
1: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ लेकिन ये बात एक मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
1: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
1: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
1: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
1: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
2: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
1: किसके बारे में?
2: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
1: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
2: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
1: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
2: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना। सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
1: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प रेखा।
3: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए?
2: लीना तुम, क्या हुआ?
1: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
3: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
1: इस पर पिताजी आए हैं।
3: तुम कब आई लीना?
2: अभी थोड़ी देर पहले।
3: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
2: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
3: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
2: वीरेंद्र वीरेन वीरेन वीरेन वीरेन,
3: क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
3: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
2: पति? गधा है गधा।
1: मालूम होता है लात खाकर आई है।
3: तुम बीच में ना बोलो जी,

0: चाचा जी आ रहे हैं मालूम है ना। हरेली ना, ठीक है ये मैं तुम्हारी चप्पड़ी पहन कर चला जाता हूँ।
1: हरेली, अरे ये क्या पागलपन है,
0: थोड़ी छोटी होती है बस।
1: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
0: गुलाब जामुन रसमलाई
1: मुझे नहीं खानी।
2: इनके चाचा जी पधार रहे हैं, अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
0: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
2: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
0: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
2: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
0: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
2: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
0: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
2: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
1: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना।
2: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
1: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
0: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
3: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
1: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
1: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
2: लीना, तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो?
1: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
1: ये लोग कोई पराए नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
0: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ।
2: ये तो क्या कर रहे हो?
0: ये बूट बूट बूट
3: ये बूट तो मेरे हैं।
0: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
2: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
1: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
1: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
2: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों यूं?
3: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
4: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
4: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
3: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
4: क्या बोलो?
3: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
4: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा हम बाग में बैठे।
3: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
4: माय डियर अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
5: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
3: नो,
5: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
3: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
3: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
4: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
3: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है, मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
4: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
3: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
5: हाँ
3: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
5: हाँ क्यों?
3: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
5: कितने का दूं बाबूजी?
3: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।

0: बैठने का 10 रुपया?
1: हाँ हाँ,
0: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
1: चलो किसी होटल में चलते हैं।
2: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
1: ऑल राइट, एज यू विश।
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये

0: क्या है?
1: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
0: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
1: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
1: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
0: मगर आप हैं कौन?
1: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
0: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
1: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
1: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
0: स्याही खत्म हो गई?
1: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
1: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
0: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
1: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट
0: माइंड। डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
1: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
1: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
0: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
1: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
1: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
1: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
1: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
1: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
0: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
1: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
1: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
0: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
1: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
0: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
1: ऐसा नहीं किया जा सकता।
0: क्यों?
1: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
0: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
1: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
1: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
1: हाँ, आज ही।
0: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
1: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
1: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
0: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
2: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
0: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
0: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
0: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
0: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना?
0: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
0: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
0: अरे भले ही ना पसंद हो लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन

0: पति के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
0: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
0: ना
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
0: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑल राइट लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो
0: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ तुम्हारे प्यार में।
0: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
0: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
0: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव। मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ होगा।
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है। मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
6: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: बॉम्बे टॉकीज,
8: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
9: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
10: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध

0: क्या बात है, क्या बात है, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर?
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माँ ने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो, रेडियो, क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने, और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी, और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
1: जी, आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है, बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे, तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरी जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का यू नो, आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें, स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए, वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।

0: पर रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में। चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
1: जी।
0: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था
1: जी। बिल्कुल, आई थिंक हम सिक्स क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
0: सिक्स क्लास में?
1: सिक्स क्लास
0: पैर वैर पहुंच रहे थे?
1: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
0: भाग जाएगी
1: चाबी चुरा के।
0: एक्सीडेंट का डर नहीं?
1: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना। बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: अरे
1: रोके कैसे, चलाना तो आता है रोके कैसे।
0: हाँ।
1: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, हम वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में। हम सिक्स में हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं। पता नहीं क्यों था मेरे।
0: गाड़ी मतलब
1: फोर व्हीलर
0: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली?
1: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही यू नो एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12-13-14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
0: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
1: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
0: तो पैर पहुंचने।
1: हाँ, क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
1: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
0: एजुकेशन पे फोकस
1: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
0: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा?

0: म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके. तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक. एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक. और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ.
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है. मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी काबिल,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है.
0: नहीं है, नहीं.
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वॉज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है. और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वाज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि हाँ. इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा जमाना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक सीएसआर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम सेवेंथ एर्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक

0: एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहां पे हम एंट्री ले चुके हैं वहां पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी. और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई.
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा बच्चा उस सीजन को जानता है. तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं. बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो. ठीक है चलो, माफ किया, छोड़ दिया हमने. इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो. तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे. इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे. हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं. मेरे माँ बाप को 12th के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड.
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे. मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था. आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी. और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे. और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा.
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए.
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था. तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे. कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है. और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था. हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था. तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था. तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था. ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा. अंग्रेजी इसको कैसे आती है. और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए. वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं. हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सिंह नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो.
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं.
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: इतना
1: रहा है.
0: बड़ा. और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है. जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना. कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है. बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू.
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया. और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है.
0: करेक्ट.
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं. तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस. हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे. बट मेरे पर्सनालिटी की

0: जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको।
1: अच्छा,
0: अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने।
0: हाँ।
1: और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई, हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी माने हुए थे
0: हम कि हम तो लड़की हैं, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल वन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ। देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का।
0: बताइए, बेटी बेचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस, ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसकी कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
0: ख्वाब
1: भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब

0: में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग। आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो है जीवन।
1: हाँ।
0: जीवन वो है
1: बिल्कुल,
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, चार दिन सल्क भी करती है और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट।
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था।
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता
1: तो
0: नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी अपने
1: कमजोरी में, दुनिया के
0: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो तूफान,
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है,
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था, लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने,
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ।
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद,
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले था। हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है, आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब एक अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है,

0: ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय, तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे you know, और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको, हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें,
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या, गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे, अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता, तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा,
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए है, अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माई गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वॉज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वॉज द स्टार, एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है, सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है,
0: वो कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में,
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है, और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान,
0: सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं, 2-3 साल के अंतर पर,
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन है,
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि

0: तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है। मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे। तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं।

0: क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते भी, जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियां स्वीकार करें उनके रेडियो से घी शिल्पा का सप्रेम नमस्कार। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छी होंगी, अपने परिवार के साथ खुश और आनंद से होंगी, साथ ही नियमित रूप से सुन ही रही होंगी जानकारी और मनोरंजन से भरपूर आपका अपना प्रोग्राम महिला जगत। बहनों, कल था भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन। हमारी अधिकांश बहनें इस समय होंगी अपने पीहर माता पिता के साथ। बहनों, हम महिलाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब भी अपने माता पिता के पास हम जाती हैं तो लगता है वो बचपन के दिन फिर से लौट आए हैं। जिस तरह एक पेड़ चाहे कितना भी ऊँचा क्यों ना हो जाए, फैल जाए, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है, उसी तरह एक स्त्री चाहे एक नई दुनिया बसा ले, लेकिन उसकी जड़ें माता पिता के आंगन से ही जुड़ी रहती हैं। और जब माता पिता हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब वो विशाल पेड़ की जड़ें अंदर तक हिल जाती हैं। हमें तब लगता है हमारा बचपन पीछे छूट गया है। जो खालीपन हमारे जीवन में आता है, उसे कोई नहीं भर सकता। हमारी जिन बहनों ने अपने माता पिता को खोने का दर्द झेला है, वो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक कर रही होंगी। फिलहाल आप सब अपनों के साथ हैं, एंजॉय कीजिए अपनों का साथ। बहनों, एक औरत पर वैसे ही अनेक भूमिकाओं को निभाने की जिम्मेदारी होती है, और अगर बाहर जाकर काम करने वाली कामकाजी महिला है तो ऑफिस और घर में अनेक भूमिकाओं, रिश्तों का संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति को अगर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि कई भूमिकाओं को निभाते हैं तो मुख्य रूप से दो मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा होती है। पहली है भूमिका संघर्ष। यह तब होता है जब एक भूमिका की मांग दूसरी भूमिका से टकराती है, जैसे आपके बच्चे का एनुअल फंक्शन और ऑफिस की जरूरी मीटिंग का एक ही समय पर होना। दूसरा है भूमिका संवर्धन। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र को ऊर्जा देती है। ऑफिस में मिली तारीफ आपको घर पर खुश रखती है, और घर का सुकून आपको ऑफिस में बेहतर काम करने की शक्ति देता है। बहनों, अक्सर हम महिलाएं रिश्ते और प्रोफेशन में अपनी भूमिकाओं में असंतुलन का शिकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके प्रमुख कारणों की और उनके प्रभावों की। हम महिलाएं हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में हर काम के लिए हाँ कह देती हैं। नतीजा क्या होता है कि काम की अधिकता के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से हम हमेशा स्वयं को थका हुआ महसूस करती हैं। खुद को सुपर वुमैन समझकर हम हर काम स्वयं करना चाहते हैं। घर पर भी ऑफिस के नोटिफिकेशन को बार बार देखते हैं, नतीजा क्या होता है, चिड़चिड़ापन और बात बात पर हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम स्वयं को टाइम तो दे ही नहीं पा रहे हैं। बहनों, रिश्तों और प्रोफेशन की भूमिकाओं का संतुलन बनाने के लिए केवल टाइम मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, इसके लिए जीवन के प्रति आपको बदलना होगा अपना दृष्टिकोण। सबसे पहले याद रखिए, परिवार के साथ बिताया गया हर घंटा मायने नहीं रखता, बल्कि उस घंटे में आपकी मौजूदगी मायने रखती है। फ़ोन दूर रखकर बच्चों या पार्टनर के साथ बिताए गए 20 मिनट फ़ोन देखते हुए बिताए गए 2 घंटों से कहीं अधिक बेहतर होगा। सीखना होगा आपको ऑफिस के तनाव को घर के दरवाजे के बाहर छोड़ना। इसके लिए ट्रांजिशन रूटीन आपको बनाना होगा। जैसे ऑफिस से घर लौटते समय आप संगीत सुन सकती हैं, या 5 मिनट शांत बैठिए जो दिमाग को संकेत दे कि अब आपकी भूमिका बदल चुकी है। हर काम को खुद करने की जिद छोड़ दीजिए। घर के कामों में तकनीक जैसे वॉशिंग मशीन है, डिशवाशर की ज़रूरत है तो उनका उपयोग कीजिए, या आप डोमेस्टिक हेल्पर की भी मदद ले सकती हैं। ऑफिस में भी सहकर्मियों पर भरोसा करें और काम को सौंपना सीखें। याद रखिए, अच्छा बनने के चक्कर में ऑफिस में अतिरिक्त कामों के लिए हमेशा हाँ नहीं कहें। अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर विनम्रता से मना करना सीखें, ताकि आप अपनी मुख्य भूमिकाओं को समय दे सकें। साथ ही एक महिला के लिए रिश्तों और प्रोफेशन में संतुलन बनाने के लिए बहनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का, खासकर आपके साथी का सहयोग और आपको समझना। साथ ही बहनों, संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बिल्कुल परफेक्ट 50% काम और 50% परिवार का होगा। किसी दिन ऑफिस को 80% समय चाहिए होगा, तो किसी दिन परिवार की मेडिकल इमरजेंसी में आपको ऑफिस को 0% भी देना होगा। वास्तव में यह एक साइकिल की सवारी जैसा है, जहां सीधा रहने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा झुकना और पैडल मारना पड़ता है। मैनो, हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी समझदारी

परिवार के सहयोग से अपनी हर भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाएं, चाहे वो ऑफिस की हो चाहे घर की हो। फिलहाल हम निभाते हैं आपसे किया आपके मनोरंजन का वादा और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: बहनों, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़, साफ पानी के बहते झरने, पक्षियों की चहचहाट, ये सब प्रकृति के नज़ारे इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। परंतु परमाणु हथियार इस सुंदर संसार को

कभी भी तबाह कर सकते हैं। परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध हर साल पूरे विश्व में 29 अगस्त को मनाया जाता है परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस परमाणु हथियार परीक्षणों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस दिवस के इतिहास की तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को अपने 64वें सत्र में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। इस तारीख को चुनने के पीछे का कारण भी है, सोवियत संघ ने कजाकिस्तान के सेमीपाल्स्टिक क्षेत्र में अपना मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल बनाया था, जहाँ 450 से अधिक परमाणु विस्फोट किए गए। 29 अगस्त 1991 को स्थानीय नागरिकों के भारी विरोध के बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने इस विनाशकारी परीक्षण स्थल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कजाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक तारीख को याद रखने और परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया। 2 दिसंबर 2009 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया और हर साल 29 अगस्त को इस दिवस के रूप में घोषित किया। बहनों, CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है। जरूरी है कि सभी देश स्वीकार करें CTBT की शर्तें, तभी सुरक्षित होगा ये संसार। जानकारी के क्रम में फिलहाल इतना ही। अब आपको सुनवाते हैं इस जानकारी के बाद आपके मनोरंजन के लिए एक और गीत।

0: बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है CKYC ID।
0: CKYC मतलब?
1: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: बहनों, हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्रकृति ने चारों तरफ रंग बिरंगे रंग फैलाकर इसे और भी आकर्षक बना दिया है। बात करें रंगों की, तो रंग हमारे घर के माहौल, हमारी ऊर्जा और हमारे मूड को सीधे प्रभावित करते हैं। सही रंगों का चुनाव करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं विभिन्न रंग और उनके प्रभावों के बारे में। मैनू, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं उत्साह और ऊर्जा जगाने वाले रंगों के बारे में। पीला रंग, यह रंग खुशी, मानसिक स्पष्टता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसे हम लिविंग रूम में या किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें नारंगी रंग की, तो यह रंग सामाजिकता और बातचीत को बढ़ावा देता है। इसे आप डाइनिंग एरिया में या लिविंग रूम में किसी भी एक दीवार पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जुनून और हाई एनर्जी वाले लाल रंग की। इसका इस्तेमाल आप कम मात्रा में करें, जैसे कुशन पर, पेंटिंग्स पर या शो पीस में। इसके अलावा बहनों, कुछ रंग ऐसे भी हैं जो शांति और संतुलन बनाते हैं, जैसे हरा रंग। यह प्रकृति, विकास और ताजगी का प्रतीक है। बेडरूम में या स्टडी रूम के लिए यह सबसे बेहतरीन रंग है। नीला रंग, यह रंग मानसिक शांति और सुकून देता है। बेडरूम और बाथरूम के लिए इसे आदर्श माना जाता है। मैनो, अगर आप सोच रही हैं कि कमरे या हॉल में कैसा और कौन सा रंग करवाना है, तो आप 60-30-10 का नियम अपना सकती हैं। मतलब पूरे कमरे में 60% हिस्सा मुख्य रंग, जैसे न्यूट्रल या लाइट शेड का, 30% हिस्सा सेकेंडरी रंग और 10% हिस्सा बोल्ड उत्साहजनक रंग, जैसे लाल हो या नारंगी रंग। अगर आप दीवारों का रंग बदले बिना भी अपने कमरे को ऊर्जावान

कलर्स का उपयोग करना चाहती हैं अपने कमरे में तो आप क्या कर सकती हैं, सोफा कवर चेंज कर सकती हैं, पर्दे, कालीन और कुशन बदलकर भी आप ये काम कर सकती हैं। मैंने हमेशा घर के कोने में हरे भरे पौधे रखकर भी आप तुरंत ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। मैंने हमारे जीवन के यह तो बाहरी रंग है, लेकिन हमारे जीवन में एक रंग ऐसा भी होता है, अगर वो हमारे जीवन में घुल जाए तो सारे बाहर के रंग बेअसर हो जाते हैं। करेंगे उस रंग के बारे में भी बात। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

गीत से पहले बहनों में बात कर रही थी जिस रंग के बारे में, वो है उदासी का रंग। महफिल सजी है, उल्लास का मेला है, पर दिल का कोना आज भी अकेला है। लाल हरा पीला हर रंग हार गया, लाल हरा पीला हर रंग हार गया, उदासी का धुंधलका सबको मार गया। सारे रंग फीके पड़ गए उदासी के रंग के आगे, जैसे टूट गए हों खुशियों के सारे कच्चे धागे। जी हाँ बहनों, जब हमारे अंदर उदासी होती है तो बाहर के सारे रंग हमें बेअसर मालूम होते हैं। कोई भी रंग हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए और इस उदासी के रंग को अपने जीवन में अधिक समय तक नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, वक्त का पहिया घूमेगा, ये धुंध भी छट जाएगी, उम्मीद की एक नई किरण इस दिल में जगमगाएगी। जो धागे आज टूटे हैं वो फिर से पिरोना है, इन फीके पड़ चुके रंगों में नया सवेरा बोना है, इन फीके पड़ चुके रंगों में नया सवेरा बोना है। इस सुंदर संदेश के साथ दीजिए अपनी रेडियो से शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें महिला जगत कार्यक्रम सुन रही थी। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे कनिका। दोस्तों, आज की बात एक बहुत खूबसूरत एहसास से जुड़ी है, रूठने से। जी हाँ, रूठना, क्योंकि जहां अपने होते हैं वहां कभी कभी शिकायतें भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं और मनमुटाव भी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपनों से बस इतना रूठो कि अपनी बात और सामने वाले का सम्मान बरकरार रहे। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। क्योंकि रूठना गलत नहीं है, लेकिन रूठ कर किसी रिश्ते को तोड़ देना शायद समझदारी नहीं है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी सबसे ज़्यादा नाराज़गी उन्हीं लोगों पर दिखाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। कभी दोस्त की कोई बात बुरी लग गई, कभी माँ पापा ने हमारी बात नहीं समझी,

कभी किसी अपने ने उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं दिया और बस हमने क्या किया, हम रूठ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रूठने और रिश्तों को चोट पहुंचाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपनी बात कहना ज़रूरी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी ज़रूरी है, लेकिन सामने वाले की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल एक छोटी सी बात पर ब्लॉक कर देना, बात बंद कर देना, स्टेटस के जरिए ताने देना या सोशल मीडिया पर नाराज़गी दिखाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन क्या हर नाराज़गी का जवाब दूरी होता है? शायद नहीं। कभी कभी एक शांत बातचीत, एक सच्चा सवाल कि तुमने ऐसा क्यों किया, और एक मौका सामने वाले को अपनी बात समझाने का, ये सब चीज़ें रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं। देखिए दोस्तों, रूठिए ज़रूर, क्योंकि रूठना भी बताता है कि सामने वाला आपके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन इतना मत रूठिए कि मनाने वाला इंसान ही डर जाए। अपनी बात इतनी ज़रूर कहिए कि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन शब्द ऐसे मत चुनिए कि सामने वाले का दिल हमेशा के लिए भारी हो जाए। याद रखिए, शब्दों के घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी उनकी याद बहुत लंबे समय तक रहती है। और दोस्तों, कभी कभी हमारा अहंकार हमारी नाराज़गी से भी बड़ा हो जाता है। हम सोचते रहते हैं कि पहले वही बात करेगा, पहले वही मनाएगा, गलती तो उसकी है तो झुकेगा भी वही। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर दोनों लोग यही सोचते रहे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? रिश्तों में हर बार झुकना हार नहीं होता, कई बार झुकना इस बात की खूबसूरती होती है कि हमारे लिए रिश्ता अपने अहंकार से ज़्यादा कीमती है। इसलिए अगर आपका अपना सच में आपके लिए मायने रखता है, तो कभी कभी एक छोटा सा संदेश, एक कॉल या सिर्फ इतना कहना, मुझे तुम्हारी बात से बुरा लगा था लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती, ये छोटी सी बात भी बहुत कुछ ठीक कर सकती है। और दोस्तों सुनिए कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि उनमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। सोच अलग हो सकती है, राय अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान कभी अलग नहीं होना चाहिए। हर इंसान हमारी तरह नहीं सोच सकता और यही जीवन की विविधता भी है। इसलिए किसी अपने से नाराज़ होने पर दरवाजे बंद करने के बजाय बातचीत की एक खिड़की खुली रखिए, क्योंकि कौन जानता है कि जिस रिश्ते को हम एक पल की नाराज़गी में ख़त्म करने जा रहे हों, वही रिश्ता हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ताकत बन सकता है। आखिरकार रूठना इंसानी फितरत है, लेकिन सम्मान के साथ मना लेना रिश्तों की खूबसूरत कला है। एक और बात दोस्तों, हर रिश्ते में सही होना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। कई बार रिश्ता बचाना भी ज़रूरी होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बात दबा दें या गलत बात को सहन कर लें। अपनी सीमाएं बनाइए, अपनी बात स्पष्ट रखिए, लेकिन सम्मान के साथ, क्योंकि जहां संवाद खत्म होता है वहां गलत फहमियाँ अपनी जगह बना लेती हैं। तो अगली बार जब आप किसी से नाराज़ हों, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ या सिर्फ सामने वाले को दुख पहुँचाना चाहता हूँ। अगर जवाब आपकी बात समझाना है, तो यकीन मानिए आपका तरीका भी बदल जाएगा और शायद रिश्ते का परिणाम भी। तो दोस्तों, आज की इस बात को आप दिल में रखिए कि अपनों से बस इतना रूठो कि अपनी बात भी बनी रहे और सामने वाले का सम्मान भी बरकरार रहे, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। नाराज़गी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिलों में सम्मान बाकी है तो बातचीत का रास्ता हमेशा जारी रहता है। चलें एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वेलकम बैक फ्रॉम द म्यूजिकल ब्रेक दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। कुछ कहानियाँ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो और कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, मध्य प्रदेश के सोनू कुर्मी की प्रेरणादायक यात्रा। एक ऐसा युवा जिसने एक हाथ में दराती लेकर खेतों में काम किया और दूसरे हाथ में किताबें उठाकर अपने भविष्य

विषय को संवारने की तैयारी की। कठिन परिस्थितियों, गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और किसान परिवार से निकलकर MPPSC परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए DSP बनने का सपना पूरा किया। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है मध्य प्रदेश के रहने वाले सोनू कुर्मी ने। गरीबी और संघर्ष को करीब से देखते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ खेतों में काम किया। उनके मन में अक्सर एक सवाल उठता था कि आखिर उनके पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो और लोगों के पास है, और शायद यही सवाल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बस यहीं से सोनू ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। एक हाथ में दराती लेकर खेत में काम भी किया और दूसरे हाथ में पढ़ाई के लिए किताबें भी उठाईं। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच कुछ बड़ा करने का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। सोनू कुर्मी मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी साझा करते हुए बताया कि उनका पालन पोषण ग्रामीण परिवेश में हुआ। जीवन यापन के लिए उनका परिवार खेतों पर निर्भर था। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिश्रम और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। खेत सिर्फ उनके परिवार की रोजी रोटी का साधन नहीं थे, बल्कि वहीं से उन्होंने मेहनत का असली अर्थ भी सीखा। सोनू बताते हैं कि उनका परिवार खेतों में काम करता था और वो भी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करने लगे। जब वह खेतों में काम करने के लिए जाते थे, तब शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह प्रशासनिक अफसर बनेंगे, क्योंकि उनके आसपास ऐसा कोई माहौल था ही नहीं। लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने और जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जरूर थी। यही वजह बनी कि उन्होंने किताबों को अपना साथी बना लिया। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सिर्फ एक सही सोच ही हमारे पूरे भविष्य की नींव बन जाती है। सोनू के लिए किताबों से जुड़ने का यही फैसला उनके भविष्य की मजबूत नींव बना। सोनू ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, लेकिन उनका सफर शुरुआत से ही आसान नहीं रहा। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहला जॉब इंटरव्यू असफल होने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गए और निराशा के दौर से भी गुजरे। गरीबी और आत्मसंदेह ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, हर मुश्किल समय में एक सहारा बहुत जरूरी होता है, और सोनू के लिए उनका परिवार वही सहारा बना। परिवार के सहयोग से उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और एक बार फिर जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। असफलताओं के बाद सोनू ने हरि सिंह विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ वे अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करते रहे। इसी दौरान उन्होंने MPPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उनका संघर्ष यही सबसे ज्यादा प्रेरणादायक बन जाता है, क्योंकि खेतों में काम करते हुए भी किताबें उनके साथ रहती थी। हर खाली समय को वो पढ़ाई में लगाते थे। परिस्थितियां कठिन थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। खेतों की मेहनत और किताबों की तैयारी दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों, सफलता का रास्ता भी हमेशा सीधा नहीं होता, और सोनू के साथ भी ऐसा ही हुआ। MPPSC परीक्षा के पहले प्रयास में वो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपनी मंजिल का अंत नहीं बनने दिया। लगातार मेहनत, संघर्ष और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ उन्होंने तैयारी जारी रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सोनू कुर्मी ने MPPSC 2015 परीक्षा में 18वीं रैंक हासिल की और DSP बने। तो दोस्तों, सोनू कुर्मी की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं रुकने का संकेत नहीं होती, बल्कि कई बार वे एक नई और बेहतर शुरुआत का रास्ता बनती हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, संसाधन चाहे सीमित हों, लेकिन अगर हमारे पास धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास है, तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। एक किसान परिवार से निकलकर खेतों में काम करते हुए किताबों को अपना साथी बनाकर DSP बनने तक का सोनू का सफर हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो आज अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने सपनों पर शक करने लगा है। और सोनू जी का संदेश भी बिल्कुल साफ है

धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके इस सफर में उनके परिवार का साथ भी उन्हें खूब मिला। तो दोस्तों, अगर आपके रास्ते में भी आज कोई मुश्किल खड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी शुरुआत बहुत छोटी है या आपके पास संसाधन कम है, तो बस सोनू कुर्मी की इस कहानी को याद रखिएगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं कि शुरुआत बड़ी हो, ज़रूरत है कि आपके सपने बड़े हों और फिर उन्हें पूरा करने का हौसला उससे भी बड़ा हो। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों,

आज यानी 29 अगस्त को पूरे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। तभी आज के दिन देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे संस्थाओं में खेल और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आज ही के दिन क्यों स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो आइए विस्तार से नेशनल स्पोर्ट्स डे की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स डे पूर्व हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद ने 400 से ज़्यादा गोल किए, दुनिया भर में हॉकी में भारत का दबदबा बनाया और देश के ओलंपिक गोल्ड मेडल की पहली हैट्रिक में अहम भूमिका निभाई। अपना खेल करियर खत्म होने के दशकों बाद भी मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल इतिहास में सबसे सम्मानित लोगों में से एक हैं। उनके योगदान को हर साल 29 अगस्त

ध्यानचंद ने 400 से ज़्यादा गोल किए, दुनिया भर में हॉकी में भारत का दबदबा बनाया और देश के ओलंपिक गोल्ड मेडल की पहली हैट्रिक में अहम भूमिका निभाई। अपना खेल करियर खत्म होने के दशकों बाद भी मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल इतिहास में सबसे सम्मानित लोगों में से एक हैं। उनके योगदान को हर साल 29 अगस्त को उनकी जयंती पर याद किया जाता है, जिसे पूरे भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि देश भर में नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के योगदान को सम्मान देने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेल और फिटनेस की बड़ी अहमियत को दिखाने के लिए इसे शुरू किया गया था। पारंपरिक रूप से यह मौका भारत के बड़े खेल सम्मानों के साथ भी जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में देश के टॉप खेल अवार्ड भारत के राष्ट्रपति नेशनल स्पोर्ट्स डे के आसपास राष्ट्रपति भवन के एक समारोह में देते रहे हैं। देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हॉकी के इस महान खिलाड़ी के नाम पर भी है। नेशनल स्पोर्ट्स डे को देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे संस्थानों में खेल और फिटनेस एक्टिविटीज़ के जरिए भी मनाया जाता है। इसका मकसद युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देना और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने की अहमियत को समझाना है।

दोस्तों, हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षणों से होने वाले दुष्प्रभावों और खतरों के प्रति दुनिया को जागरूक करना है। इस दिन का नाम है परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 दिसंबर 2009 को इसे अपनाया गया और पहली बार 29 अगस्त 2010 को यह दिवस मनाया गया। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि 29 अगस्त 1951

0: विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

लीजिए, पहले सुनिए हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 7 बजे जयपुर केंद्र से रिलीज किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 बजे। रात्रि 8:15 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। रात्रि 9:45 बजे हिंदी में व 9:00 बजे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। 9:15 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। रात्रि 11:00 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिलीज किए जाएंगे।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार होगा सवेरे 6:05 पर। 6:30 पर झरू का कार्यक्रम होगा। रामचरित मानस गान आप सुन पाएंगे सवेरे 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम विविध भारती से रिले किया जाएगा। सवेरे 7 आप सुन पाएंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। सवेरे 8 समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। सवेरे 8:30 पर आप सुन पाएंगे स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम। कल के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता लीवर का ख्याल स्वास्थ्य बेमिसाल। जानकारी देंगे डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल। सवेरे 9 हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिखे जाएंगे। 9:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे।

और अब सुनिए हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। कल सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे।

कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के साथ मन की बात तथा मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 12:05 पर आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत है कयामत से कयामत फिल्म्स से, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, संगीत आनंद मिलिंद का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

और जब कार्यक्रम के आखिरी में सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गायकी सुनिए, फिल्म है ओम शांति ओम।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिखे जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज, अब तक 6000 से अधिक नामांकन दाखिल। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे होगी। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले महीने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के आज तीसरे दिन 4,800 से अधिक उम्मीदवारों ने 5,000 से ज्यादा नामांकन पत्र भरे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए अब तक कुल 6,124 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 31 अगस्त को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिन है। इसके बाद ही कुल प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच आज नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निकाय कार्यालयों में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवारों की भीड़ देखी गई। साथ ही प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार में जुट गए हैं।

0: भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर रहे हैं। उधर कई स्थानों पर तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी मुकाबलों को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना रहे हैं। निकाय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। स्वीप सतरंगी सप्ताह के तहत आज विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालकर भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया गया। बालोतरा के मोकलसर में विद्यार्थियों ने वोट की आकृति बनाकर मतदाता जागरूकता की अलख जगाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दावों की नियमित निगरानी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि RGHS के तहत गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही राशि का पारदर्शी और उचित उपयोग सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। योजना में AI आधारित निगरानी और दस्तावेजों के सत्यापन से संदिग्ध पैटर्न की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में सीकर स्थित SB मित्तल मेमोरियल हार्ट और क्रिटिकल केयर अस्पताल को RGHS से निलंबित किया गया है। इस अस्पताल को छोड़ चुके चिकित्सक के नाम पर यहां रिकॉर्ड में हेरफेर करने की बात सामने आई थी। मामले की गहन जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षा सुधार को लेकर सार्वजनिक सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने और परीक्षण तैयार करने वाली संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों के साथ ही नागरिक समाज संगठन और अन्य लोग 13 सितम्बर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। गौरतलब है कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, शिकायत निवारण और हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने सहित अन्य उपायों पर सुझाव मांगे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने साइबर ठगी की जांच के दौरान बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जांच एजेंसियों और बैंकों द्वारा खातों को फ्रीज करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन और विवादित राशि पर रोक लगाने की बजाय पूरे खाते को फ्रीज करने के मामले पर गाइडलाइंस जारी की है। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
1: जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने साइबर ठगी से जुड़ी 100 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाल ही में ये आदेश दिया कि साइबर ठगी से जुड़े मामलों में संदेहास्पद लेन देन के बजाय बिना सोचे समझे पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जाए। ऐसा करना नागरिकों के मौलिक अधिकार और आजीविका पर आघात होगा। उन्होंने कहा कि केवल जांच लंबित होने के आधार पर बैंक खाता अनिश्चित काल तक फ्रीज नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और साइबर क्राइम प्रभारियों को परिपत्र जारी करने को कहा है। साथ ही राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो खातों को फ्रीज रखने से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगा।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गीज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के उज्बेकिस्तान आगमन की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। राजधानी ताशकंद में जगह जगह भारतीय ध्वज तिरंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का 137वां संस्करण कल होगा।

0: श्री मोदी कल सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं, साथ ही देशवासियों की प्रेरणादायक कहानियों, पहलों और उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर में आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मृत्यु हो गई और 2 युवक घायल हो गए। दुर्घटना गोविंदगढ़ क्षेत्र में सिरमौर पुलिया के पास एक पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर से हुई, जिसमें पिकअप सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर सीकर में आज तड़के इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम में आग लग गई। हादसे में करीब 40 वाहन जलकर नष्ट हो गए। पुलिस ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। प्रदेश में बरसात का दौर थमने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी होने लगी है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान पिछले 3-4 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बरसात की गतिविधियां अब फिलहाल सुस्त रहने के आसार हैं। 4 सितंबर से राज्य के पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बरसात हो सकती है। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से करीब 17% कम पानी बरसा है। डीग और फलौदी जिले में ही सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं अजमेर, अलवर, जोधपुर, चूरू और सीकर सहित 20 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा सहित 19 जिले कम बारिश वाले स्थानों में शामिल हैं। 693 छोटे बड़े बांधों में से 437 आंशिक रूप से भरे हैं, वहीं केवल 57 बांध ही लबालब हैं। राज्य के कुल बांधों में अब तक 57% से अधिक जल भराव हुआ है। हालांकि पिछले साल इस समय तक इनमें 82% से अधिक पानी की आवक हो चुकी थी। बारिश के मौसम में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का आना जारी है। उदयपुर और सिरोही के आबूराज में भी अच्छी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। आबूराज में मौसम सुहाना बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग नक्की झील और गुरु शिखर सहित विभिन्न स्थानों पर हरी भरी वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: माउंट आबू में लगातार 3 दिनों के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आए सैलानी यहां के सुहावने और धुंध भरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। नक्की झील, गुरु शिखर, देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम में घुली ठंडक, बादलों और धुंध की चादर के बीच माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मांडविया ने लोगों को खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं को कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। लाखों की संख्या में हर गली में, मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।
0: श्री मेघवाल ने शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ ही तनाव मुक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: खेल से आदमी फिट भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। नेशनल स्पोर्ट डे पे जो 1 घंटा खेल को देने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हम फिट तो इंडिया फिट, और विकसित भारत बनाने की राह में भी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हॉकी के महान खिलाड़ी

0: मेजर ध्यानचंद को नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि खेलों में अपार अवसर है, लगातार अभ्यास, सकारात्मकता और मन लगाकर प्रयास करने से सफलता पाई जा सकती है। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विभिन्न आयोजन हुए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेल समारोह रखा गया। नागौर, पाली सहित कई स्थानों पर खेल महोत्सव भी आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज, अब तक करीब 9000 नामांकन दाखिल। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे होगी। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह जिला खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। जलदाय और भूजल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान की धुन पर पुलिस तथा आरएसी के बैंड ने प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 88 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालयों और अन्य संस्थानों में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और देश के प्रति नागरिकों के दायित्वों का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन का पर्व भी जिले भर में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। घरों में भाई बहनों ने एक दूसरे के प्रति स्नेह व्यक्त किया। टोंक में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने कोतवाली थाना पुलिस लाइन और बनेठा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों को राखियां बांधी। इस दौरान नशा मुक्त और संस्कार युक्त जीवन का संदेश दिया गया। मालपुरा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जिला अस्पताल भवन और 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4-लेन सड़क का हाल ही में शिलान्यास किया। जिला अस्पताल बनने से मालपुरा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। जलदाय मंत्री ने आने वाले समय में मालपुरा क्षेत्र में पेयजल, सड़क, सीवरेज, विद्युत और अन्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी भी दी। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की व्यवस्थाओं की जाँच की। अजमेर और टोंक जिले में मोबाइल वेटरनरी यूनिट का निरीक्षण किया गया। केकड़ी और देवली में वाहनों की उपलब्ध सुविधाओं और दवाओं की जांच की गई। दूर दराज की यूनिटों की जीपीएस लोकेशन भी देखी गई। वाहनों में आवश्यक दवाओं और टीकों की उपलब्धता की जांच की गई। विभाग की ओर से भेड़ बकरी पालकों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। प्रवास के दौरान लंबी दूरी तय करने वाली भेड़ों के पैरों में होने वाली चोट और घाव को देखते हुए मोबाइल वेटरनरी यूनिट को ऐसे पशुपालकों को मौके पर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालकों से 1962 टोल फ्री नंबर का उपयोग करने की अपील की गई है। जिले में किसानों के लिए उर्वरक वितरण से जुड़ी नई व्यवस्था शुरू की गई है। निवाई में FFS ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसान यूरिया, DAP सहित अन्य उर्वरकों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। मोबाइल नंबर और आधार आधारित सत्यापन के बाद किसान अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के बाद उन्हें एक बुकिंग आईडी मिलेगी, जिसके आधार पर निर्धारित केंद्र से खाद प्राप्त की जा सकेगी। इससे उर्वरक वितरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। जिले में साइबर अपराध के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई हुई। टोंक पुलिस की DST टीम ने दत्तवास में 11 साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 वाहन, 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 5 ATM कार्ड और 37,000 रुपए बरामद किए। जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम

0: शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर से अरबी फारसी शोध संस्थान तक मोटरबाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की गई। नगर पालिका दूनी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मतदाताओं को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने मुख्य बाजार में रैली निकालकर अधिक से अधिक मतदान की अपील की। इस तरह टोंक जिले में बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन के आयोजन के साथ विकास, पशुपालन, कृषि, खेल और साइबर अपराध से जुड़े काम हुए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू हो गया है। प्रशासन और पुलिस चुनाव व्यवस्था के साथ साथ आमजन से जुड़े दूसरे कार्यों पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आवता महीना वेवन वाला नगरीय निकाय चुनाव री हलचल तेज हुई। हाल तई करीब 9000 पर्चा दाखिल करी चिया। केंद्र सरकार देश री सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार सारू हित धारकारी राय मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय काल सवारे 11 बजे विचार बतावेला। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जनताओं खेलना ने रोजीना री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रदेश में आवता महीना फेवन वाला नगरीय निकाय चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रा काम रा तीजा दिन आज 7,072 उम्मीदवार 7,858 नाम पाना दाखिल कीना। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 309 स्थानीय निकायां रा कुल 10,245 वार्डा सारू हाल ताई 8,995 पर्चा दाखिल कर दिया चिया है। नाम पाना दाखिल करण री आखिरी तारीख 31 अगस्त है। हालांकि काल दीतवार ने पर्चा दाखिल नहीं करया जा सकेला। नाम पाना 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। ए बीच आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल करण सारू मोटी तादाद माए उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर रा दफ्तर माए पुग्या। पर्चा दाखिल करण रा काम सा गई उम्मीदवार कान्यू जनसंपर्क रो काम ही जोर पकड़बा लग्यो है। उम्मीदवार फिलहाल सोशल मीडिया रे जरिए प्रचार करता नजर आ रहा है। खास सियासी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस आ गई कई दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार रातौर हुई चुनाव मैदान में उतर रहा है। कई थोड़ा न्यारी न्यारी सियासी पार्टियां रा और निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबला ने दिलचस्प बना रहा है। निकाय चुनाव में बत्तों बत्ता मतदाताओं की भागीदारी तय करण सारू वोट देवण री जाग जगावण वाला खास कार्यक्रम रखा जा रहा है। स्वीप सतरंगी सप्ताह रातेत आज न्यारी न्यारी ठोड़ा रैलियां निकालर बिना डरिया मर्जीरा उम्मीदवार ने वोट देवन रो संदेश दियो चियो। बालोतरा जिला रा मोकलसर माए विद्यार्थी वोट री आकृति बनार मतदाता जागरूकता री अलख जगाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माए साफ कोई तय करण सारू दावा री नियमित निगरानी और कागजात रो सत्यापन करियो जा रियो है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि RGHS रातेत बेहतर इलाज मुहैया करावन सा गई रकम साफ कोई सागे काम लेवण तय करण माथे सरकार रो खास ध्यान है। योजना रातेत AI आधारित निगरानी और कागजात रा सत्यापन शंका लायक पैटर्न री पिछाण करी जा रही है। वे बतायो कि इन्हीं आधारों सीकर रा SB मित्तल मेमोरियल हार्ट और क्रिटिकल केयर अस्पताल ने RGHS निलंबित करती उचियो है। वठे वो अस्पताल छोड़ चुकिया डॉक्टर रा नाम रिकॉर्ड माए हेराफेरी री शंका पाछे मामला री जांच करी जा रही है। केंद्र सरकार देश माए सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था माए सुधार सारू जनता री राय मांगी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग रे मुजब ई सारू परीक्षा करावण और परीक्षण तैयार करण वाली संस्थावां विषयां रा जानकारां और प्रौद्योगिकी पेशेवरां सा गई आमजन और सामाजिक संगठन 13 सितंबर ताई राय दे सके है। ध्यानजोग है कि श्री

0: नंदन नीलकेणी री सदारत वाली टास्क फोर्स परीक्षावां माई साफ कोई शिकायतां आगी करण हर हितधारकां सागे संवाद स्थापित करण समेत न्यारा न्यारा उपायां माथे राय मांगी है। राजस्थान हाईकोर्ट साइबर ठगीरा मामला री जांच रे दौरान बैंक खाता ने मनमाना तरीका फ्रीज करण रे बारा माए जांच एजेंसियां और बैंकां सारू विगतवार दिशा निर्देश जारी कीना है। अदालत शंका वाला लेन देन और टंटारी रकम माथे रोक लगावन री बजाय संबंधित खाताओं लेन देन बिल्कुल बंद करण रा मामला माए गाइडलाइंस जारी कीने है। और ब्यूरो न्यूज डेस्क को सालेहा गाजियों।
1: न्यायमूर्ति आनंद शर्मा री एकल पीठ साइबर ठगियों जुड़ी 132 अर्जिया री सुनवाई करता तका हाल ही माए साइबर ठगियों जुड़िया मामला माए शंका वाला लेन देन री बजाय बिना सोचा समझा पूरो बैंक खातो फ्रीज नी करण रो हुकुम दीनो है। अदालत कयो कि एड़ो करनो जनता रा बुनियादी हक और काम कमाई रा जरिया माथे चोट है। न्यायमूर्ति शर्मा कयो कि केवल जांच चालती रेवन रा आधार हु बैंक खातो

0: हर बैंका सारू विगतवार दिशा निर्देश जारी कीना है। अदालत शंका वाला लेन देन और टंटारी रकम माथे रोक लगावन री बजाय संबंधित खाताओं लेन देन बिल्कुल बंद करन रा मामला माय गाइडलाइंस जारी कीने है। और ब्यूरो न्यूज डेस्क सालेह गाजी।
1: न्यायमूर्ति आनंद शर्मा री एकल पीठ साइबर ठगी जुड़ी 132 अर्जिया री सुनवाई करता तका हाल ही माय साइबर ठगी जुड़िया मामला माय शंका वाला लेन देन री बजाय बिना सोचा समझा पूरो बैंक खातो फ्रीज नी करण रो हुकुम दीनो है। अदालत कयो कि एड़ो करनो जनता रा बुनियादी हक और काम कमाई रा जरिया माथे चोट है। न्यायमूर्ति शर्मा कयो कि केवल जांच चालती रेवन रा आधार हु बैंक खातो बेमियादी बगत ताई फ्रीज नी राख्यो जा सके है। अदालत इबारा माए पुलिस महानिदेशक और साइबर क्राइम प्रभारिया ने सर्कुलर जारी करण सारू कयो है। इस आगे ही अदालत खाता ने फ्रीज राखण जुड़ी शिकायता री निगरानी सारू राज्य स्तर माथे एक आला अहलकार री नियुक्ति करण बाबती कयो है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य रा दौरा सारू रवाना भे क्या। ये मौके वे कहो कि हमारा चार दिन रा इन दौराओं मध्य एशिया माय भारत री रणनीतिक साझेदारियां मजबूत फैला। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान रा राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव सागे कारोबार निवेश डिजिटल संपर्क रक्षा और ऊर्जा हलका माय मदद बधावन रे बारा माय बातचीत करेला। ए बीच प्रधानमंत्री मोदी रा उज्बेकिस्तान दौरा न ध्यान रखता थका वठेरी राजधानी ताशकंद माय न्यारी न्यारी ठोणा भारत रो तिरंगो झंडो लहरा तो नीचे राठियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला। वो कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला आकाशवाणी समाचार री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे प्रसारित करयो जावेला। इसागे AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल माथे ही इनरो प्रसारण करियो जावेला। अलवर जिला रा गोविंदगढ़ हलका माए सिरमौर पुलिया कने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे माथे आज तड़के एक पिकअप और ट्रक री टक्कर रे कारण 3 जना री मौत वेगी और 2 जना जख्मी वे क्या। पिकअप माए सवार नौजवान मौके दम तोड़ दीनो। दूजी कानी सीकर माए आज तड़के बैटरियों चालन वाली गाड़ियां रा शोरूम माए लाए लाग जावन रे कारण करीब 40 गाड़ियां बढ़गी। पुलिस रे मुजब शॉर्ट सर्किट रे कारण लाए लागन रो अंदेशो है। अरब मौसम प्रदेश माए चौमासारी बिरखा मंदी पड़बा सा गई पारो ओजू चढ़वा लाग्यो है जिनू घन खरठोणा दिन री बगत तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस ताई चढ़क्यो। श्री गंगानगर माए लाडला 3-4 दिनों अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे RSR दर्ज करियो जा रियो है। लाडला 24 घंटा माए प्रदेश रा उगनी हलका माए कठे कठे थोड़ी घनी बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब 4 सितंबर रो राज्य रा उगनी हलका माए कठे कठे छुटपुट बरसात फै सके है। दूजी कानी जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य माए हाल ताई सामान्य करीब 17% कम पानी बरसियो है। डीग और फलौदी जिला माए सामान्य बत्तों में बरसियो। अजमेर अलवर जोधपुर चूरू और सीकर समेत 20 जिला माए सामान्य बरसात हुई। राजधानी जयपुर कोटा उदयपुर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा समेत 19 जिला माए सामान्य कम बारिश हुई। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायो हाल ताई 437 थोड़ा घना भरिया है जबकि केवल 57 बंधा पूरा भर सक्या है। प्रदेश रा बंधा माए कुल बूतारो 57% पानी भर सक्यो है। हालांकि लारला साल इनी मियाद माए 82% बत्तो पानी भर क्यो हो। ए बीच राज्य माए सैर सपाटारी नैरी नैरी ठोणा सैलानी लगातार पूग रिया है। उदयपुर और सिरोही रा आबूराज माई मोटी तादाद माई सैलानी पूग रिया है। माना सिरोही खबर नवीस बतायो कि आबूराज रा सुहावना मौसम माई सैलानी नखी झील और गुरु शिखर समेत न्यारी न्यारी छोड़ा हरी भरी वादियां रो मजो ले रिया है।
2: माउंट आबू में लगातार 3 दिनों के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रही

0: गुजरात व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आए सैलानी यहां के सुहावने और धुंध भरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। नक्की झील, गुरु शिखर, देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम में घुली ठंडक, बादलों और धुंध की चादर के बीच माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके आज आखा देश में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जा। ये मौके नई दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राखी जा खास कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली शामिल भया। ये मौके मांडविया जनताओं खेलना न रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। लाखों की संख्या में हर गली में मैदान में देश के युवा एक घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।
1: कार्यक्रम में कानून मंत्री शरीर री हलचल रा महत्व माथे जोर तीनो व कहो का खेल शारीरिक तौर फिट रखन सागे बिना तनाव जीवन में खास काम करे है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रदेश में आवता महीना भेवन वाला नगरीय निकाय चुनाव री हलचल तेज हुई। हाल ताई करीब 9,000 पर्चा दाखिल करी चिया। केंद्र सरकार देश री सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार सारू हित धारकारी राय मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला मन की बात कार्यक्रम री 137वीं कड़ी माए काल सुमार 11 बजे विचार बतावेला। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जनताओं खेलना न रोजिनारी जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब किसानवाणी कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला हेतालु श्रोतावा ने जका दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बेटर आपनो कार्यक्रम सुने है, बस सगला हेतालवा ने घणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा रो राम राम। और राजू भाई आपने भी मोकलो मोकलो राम राम।
7: राम राम प्रभु भाई और किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला सरतान है राजू चौधरी को घणो घणो राम राम सा।
6: राजू भाई

0: नहीं हालचाल
1: हालचाल चुका है सा देखो हालचाल चुका रंग बा के लिए अपन देखो खेलकूद की जो अपना प्रतिक्रिया है भी चालू रंगनी चाहिए
0: बिल्कुल राजू भाई देखो क्यों जावे है के भाई के स्वस्थ शरीर के माय नहीं स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो रेस्क है या अपना माइत है बड़ा बुजुर्ग है वे बातड़ी किया करता के भाई पहलो सुख निरोगी काया अपनी काया निरोगी रेवे आपा अच्छा मनसू कोई काम जो को करा भी के मायने सफलता लेवा तो एक वास्ते जरूरी है कि अपन अपनो तन और मन दोनों स्वस्थ रखने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल और आज है देखो राष्ट्रीय खेल दिवस तो यो भी अपन यही संदेश देवे कि आपा जो अपना जो चाहे ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहरी परिवेश में हो तो अपना जो बच्चा है या आपा खुद हाँ तो अपन खेल कूद और जो व्यायाम की जो प्रतिक्रिया है प्रतियोगिता है बम सब में और अपना खुद का स्वास्थ्य का आपा जागरूक और आपा देखो करना चाहिए
0: बिल्कुल राजू भाई थे सांची बात कर रहे हो देखो आज आपने जगह हॉकी का जादूगर के नाम सुजग देश और दुनिया के माने जाने जावे मेजर ध्यानचंद जी मन आपा कार्यक्रम के माध्यम से मंडलेरा अपना फूल चढ़ावा अत्ता बड़ा शख्सियत अपने देश के मायने यार हॉकी के जादूगर सु हॉकी ने नई ऊंचाई पर भी लेर गया तो राजू भाई जहाँ पुराना टाइम का मायने जगह परंपरागत खेल आज यहाँ गिल्ली डंडा है सतोलिया है कबड्डी है टाइला है जगह खेलिया करता आज वो टाबरिया मांगो नाव तक भी गुंजाने
1: बिल्कुल
0: तो अपन ब खेलन जीवता रांकने है पाछा देखो और खेल ने अपन यहाँ नहीं कह भाई कदे कदे अपन खेल खेल लिया अपन रोजिना का अपना जीवन का मायने खेल और व्यायाम ने अपन सम्मिलित करना है राजू भाई
1: बिल्कुल और देखो खेल राष्ट्रीय खेल दिवस को जो उद्देश्य वो भी यही है कि युवाओं को खेल के प्रति जो जागरूक करना लोगों स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनावा के लिए अपन आगे बढ़ानो और देश में जो खेल प्रतिभा बन पहचान आगे बढ़ावा को अवसर देवो खेल भावना अनुशासन ने आगे बढ़ावो और जो भारत का महान खिलाड़ी और उपलब्धियां हैं बाकी याद रखो
0: बिल्कुल बाकी याद रखा और आप अपना टाबरिया ने देखो घर से बाहर निकाल बन क्या अपन बन बताना पड़ लो देखो टेक्नोलॉजी को दौर है जरूर आपनो देश तरक्की करे लेकिन सागे सागे आप अपने स्वास्थ्य ने खेलना के माध्यम से भी फिट रखा चोखो रखा और अपनी तंदुरुस्ती बनी रहे इस वास्ते खेल खेलना भी बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल सा तो आगे बढ़ाओ कार्यक्रम ने
0: बिल्कुल कार्यक्रम ने देखो आगे बढ़ावा और पहले आप एक बात भी सुन लिया और भी के बच्चा बात चिता और कर छा तो कार्यक्रम के मायने जानकारी देवा के वास्ता अपने सागे राकेश कुमार यादव जी और काई है मिश्रित कृषि और अनुबंधित खेती के ऊपर अपन जानकारी और आसू बातचीत अपने चंचल बहन कर रहे हैं तो क्यों ने चंचल बहन ने देवा माइक वासू आप बातचीत करवा
1: बिल्कुल
2: तकनीकी का युग में जद नवाचार अपनावा ला तो साधारण कोनी आपा विशेष किसान कहलावा ला तो किसान भाइयों किसान वाणी में आज आपा बात कर रहे हैं एक अच्छा ही नवाचार की जिन्हें कहवा हाँ अनुबंध कृषि और मिश्रित कृषि जो काई है इको काई महत्व है इसू अपना काश्तकार भाई बहन कहीं जुड़ सके है सवाल बहुत सारा है पर जवाब देवा खातिर विशेषज्ञ की तरफ चाल लो वेलो और विशेषज्ञ अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश कुमार यादव तो सेहूं पहले यादव साहब कार्यक्रम में घने मानो स्वागत राम राम सा
3: राम राम सा
2: आज को जो विषय है बहुत ही अनोखो विषय है अनुबंध कृषि री आप बात कर रहे हैं मिश्रित कृषि री आप बात कर रहे हैं तो जान पो चावला कि यो अनुबंध कृषि होवे काई है और क्यों एक ही जरूरत पड़ रही है आपने
3: बहुत अच्छो सवाल छे था कुबी मैडम अनुबंध कृषि को मतलब हो वचे कि फसल बुआई सु पहले ही कंपनी के साथ कंपनी आवचे किसान कने और फसल की बुआई सु पहले ही कीमत तय कर दे छे 102 जाए छे फसल बुआई सु पहले ही
2: जी
3: और कृषि अर्थशास्त्र को विद्यार्थी हो बाके नाते मैं थाने बताऊं कि राजस्थान का जो किसान हुए बैके मुख्य दो जोखिम आवे पहली जोखिम आवे जिया बाजार का मंदी
2: जी
3: और दूसरी आवे मौसम की मार तो आज को जो विषय है वो मौसम की मार और बाजार की मंदी सु हटाबा के लिए किसान जो प्रभावित हो जाने दूर करबा के लिए ही छे
2: तो कई चरण है एका की तरीका को काम ये अनुबंध खेती में देखभाने मिले साहब
3: अनुबंध कृषि में जिया कंपनी किसान कन आवली ना तो पहले फसल की बुआई सु पहले ही भी को भाव मोल तय कर ले ली और भी का मायने एक लिखित समझौतो छे जिया का अकाल ने फसल को खराब हो गो ये प्राकृतिक आपदा की वजह सु तो या तो फसल बीमा जो कंपनी डील करी जब फसल को बीमो दे ली बीमो करवाओ ली या फिर लागत में बिन सहायता प्रदान कर ली किसान
2: अच्छा तो पहली सुई तय हो जावे कि मैं था की फसल ने खरीदा ला तो कहीं कीमत वगैरह सब तय हो जावे
3: बिल्कुल मैडम थे सही सवाल करया जो और कीमत भी तय हो जाए छे और एक लिखित समझौतो हो छे
2: अच्छा तो यो कानूनी समझौतो

0: जो होवे इमें कहीं कोई वकील वकील लागे कहीं
1: नहीं वकील को ना एक लिखित समझौतो छे सरल भाषा में यदि कंपनी कदे छे जो किसान के साथ चोट कर जाए छे या फिर जिया कल ने खेदे छे कि मैं था कि फसल ने कौन खरीदा
0: हाँ।
1: तो भी स्थिति में किसान जिला स्तर माले कलेक्टर कन शिकायत कर सके छे क्योंकि भी कने एक प्रूफ रहे छे सबूत रहे छे कि मैं था कने फसल खरीदला आ चीज लिखित में रहे छे।
0: अच्छा अच्छा तो जो अपना काश्तकार है वे अनुबंध खेती करबो चावे या मिश्रित खेती करबो चावे है या फिर जो भी नवाचार हो बिना अपनाबो ही चावे क्योंकि किसान भी आगे बढ़बो चाह रहे है कदम सु कदम मिलाड़ नया जमाना के साथ चालबो चाह रहे है ऐसी स्थिति में अनुबंध कृषि एक जो नयो विचार है और कंपनियां बाको जो फसल है बिना खरीदे है तो बाने एक अंदाजो तो हो जावे कि माने ये तरीका को काम करनो है लेकिन कई बार जो मौसम हुए वो बिगड़ जावे और जो गुणवत्ता कंपनी चाहिए ही बशी गुणवत्ता को जो है फसल को उत्पादन कोनी हुए तो कहीं ई पर असर पड़े फिर
1: नहीं मैडम असर को देखो बी टेम जहाँ सौदो तय वो छे ना किसान और कंपनी के बीच में तो बी टेम भी लिखित समझौता में आ चीज भी लिखी जाए छे कि था को फिक्स हो गो बा यदि मारो ली मौसम की तो वो सहन कराला मैं
0: अच्छा।
1: माने लिखित में रचे फसल को बीमो कंपनी दे जिया मैं थाने पहले बताया और लागत में यदि लागत प्रभावित होगी फसल खराब होगो तो भी कोई दवाई की रोग कीट लागू तो भी प्रभावित हुई ना तो बीमा भी वह कंपनी हेल्प करे जो किसान की सहायता करे
0: जो खर्चो करे है काश्तकार भी की जो मदद है वह कंपनी करे
1: हाँ, स्पेशल कोई खर्चो आयो ना जी लागत होगी फसल को बीमा में खराबा की बात हुई ना जना।
0: अच्छा अब बात कर रहा है यादव साहब मिश्रित खेती की आपने अठे पानी बयाई कम है राजस्थान में और आप कई बार हुए कि बाजरो है या ग्वार है अशी जो फसल है हमें सूखा की मार पड़ जावे है अब अशी स्थिति में जो मिश्रित खेती है या कहीं काम कर सके है और काश्तकार ने नुकसान से बचा सके।
1: देखो सबसे बड़ो सवाल से था और अच्छो सवाल से कि मिश्रित खेती कहीं बचाओ ली तो पहले स्टेप में था बता दू मैं कृषि अर्थशास्त्र को बागनाते एक कहावत से मारवाड़ी में एक अंडा यदि आप सारा एक ही टोकरी में रखा ला ना तो कारणवश वह टोकरी गिर गई तो सारा अंडा फूट जाएगा ठीक ई प्रकार ई कहावत पर आधारित से आ चीज की किसान ने सिर्फ खेती माले फसल माले डिपेंड निर्भर नहीं रहनो
0: इनके
1: साथ में पशुपालन मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन भी करनो यदि कारणवश जिया प्राकृतिक आपदो सूखा बाढ़ अकाल की वजह से अपनी फसल खराब होगी तो भी स्थिति का मायने बकरी पालन कर रहे वो रोज रोजिना की आमदनी ले सके
0: जी भूखा मरबा की नौबत तो कोनी
1: भूखा मरबा की नौबत तो कतई को ना वो रोजिना आराम से आपका पैसा दूध और बेच अंडा बेच और या मधुमक्खी पालन करे तो शहद बेच और तो फिर अपनो काम काट सके।
0: अच्छा तो आप बता रहे हो कि मिश्रित खेती की तरफ भी काश्तकार ने ध्यान देना चाहिए और यो जो एक नवाचार है इन्हें अपनानो चाहिए काश्तकार हमेशा देखे है कि क्यों नयो तो मैं करूं पर थोड़ी सी अगर पीसा की सहायता भी इन्हें मिल जावे तो आसानी होवे तो जब मिश्रित खेती की तरफ काश्तकार जावे तो कोई बिना आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से।
1: देखो स्पेशली मिश्रित खेती के लिए गुण है पर पशुपालन पर वो लोन ले सके छे और जिया किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करे छे बैंक तो किसान ने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सके छे और आपकी फसल कटाई बने जना बे पैसा लौटा सके छे।
0: अच्छा साहब अच्छा एक बात बताओ आप पारंपरिक खेती करा कई बार आप देखा हाँ कि मिश्रित खेती है जो अपना ठंडा ढोर भी में आवे है और अपनी फसल भी आवे तो दोनों के बीच में जो तालमेल बैठावा की बात आवे तो बिने की तरीका देखे काश्तकार।
1: देखो मिश्रित खेती को असली मंत्री यो छे कि एक को कचरो दूसरा की खुराक जिया पशुपालन में पशुओं को गोबर अपनी फसला के लिए खुराक कोई काम करे छे और जिया फसल अवशेष जिया आज आपनो खराब होगो फसल को तो फसल जिया बाजरो बार अपना खेतम छे और बारिश आ गई और हवा चाल गई तो वो लौट गो तो भी स्थिति में दाना तो भी कमाए पड़ला कौन पर वो जो घास छे ना बिको फसल अवशेष वो अपना फसला में को अपना पशुआ के लिए चारा का रूप में काम आ जाए लू
0: जी।
1: तो अहिया छे मैडम बात की वो पशुआ को जो मुफ्त और शानदार चारो बन जाए छे वह तूड़ीर कड़वीर सूखी पत्तियां तो था का जो अपना जो पशु छे ना बको गोबर जो गोमूत्र मिले छे बेसू और जिस जगह माध्यम से आप बेहतरीन कैचवा की खाद बना सका चा और गोबर की खाद और भी के साथ में जीवामृत बना सका चा तो बिको उपयोग आप फसला में करा ला तो अपनी फसल एक शानदार हो जाएगी बढ़िया उत्पादन मिल लो बिको उपयोग जिया कैचवा की खाद को आप अपना जो फल वृक्ष है यदि वह में डाला चा तो ग्रोथ की वृद्धि जल्दी हो ली और उत्पादन भी जल्दी हो लो और ज्यादा हो लो।
0: अच्छा यादव साहब मिश्रित खेती की आप बात कर रहे हो और कह रहे हो कि एक को खराब हो जो है या एक को अपशिष्ट दूसरा को खुराक बन जावे या तो बात सही है ही है कई बार मिश्रित खेती काश्तकार के लिए आज का दौर

0: में जो ढांडा ढोराने में पाले है एक नयो रोजगार भी बन जावे। जी आप जीवामृतरी बात करे या वर्मी कंपोस्ट से आप बात करा तो इन्हें की तरीका लेट जा सके एक नया और अनोखा रोजगार की तरह।
1: हाँ देखो मैडम, सबसे बढ़िया छे काम मिश्रित खेती जो थे बताया और मैं उठान बताया, तो मिश्रित खेती में फसल सु तो मिलगा फसल का उससे सिर्फ पशु चारो और पशुओं को जो छे कि जो गोबर मलमूत्र भी को उपयोग आपा वर्मी कंपोस्ट में, यदि आपा नाकन खेती कम छे और खेती यदि आपा बढ़ा रहा चा तो पशुपालन बढ़ जाओ लो साथ में वो चारो बह का उपयोग में आ जाए लो और जो बको गोबर मलमूत्र छे विशु वर्मी कंपोस्ट तैयार कर और एक आपको खुद को नयो रोजगार तैयार कर से खुद के लिए भी और खुद दूसरा ने भी वो रोजगार दे सके। बहुत अच्छो कदम हो सके
0: बेच भी सके छे
1: बेच सके छे आराम से बढ़िया जी हाँ बल्क में 5 रुपया की लंबिक जाए ली और यदि छोटा जाए तो फिर थोड़ा सा 20 आपसे बिक जाए।
0: अच्छा अगर आपा नवाचारा की बात कर रहा हाँ, अनुबंध खेती की बात कर रहा हाँ, मिश्रित खेती की बात कर रहा हाँ, और किसान का जोखिम की बात कर रहा हाँ, तो आम में तालमेल कहीं बैठा सके काश्तकार।
1: देखो तालमेल में थाने पहले भी बताया जी बाजार सबसे दो ही मुख्य अपना राजस्थान का किसान के लिए समस्या आवे बाजार की मंदी और दूसरी आवे जी हाँ मौसम की मार। बाजार की मंदी सु बचबा के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंधित खेती अपना और भी मंदी सु बाहर निकल सके जी हाँ। आज जो भाव गंवार का भी टेम तय होगा भाई 60 रुपया किलो लूला 6000 रुपया प्रति क्विंटल था कना खरीदू लो चाहे बाजार में भाव बिका 4000 मतलब 40 रुपया किलो ही क्यों न बिक्रे हुए है भी स्थिति में किसान अभी मारसू बाजार की मंदी की भाव सु बच जाए लो। दूसरी चीज ओना पोना भाव मिलबा के बजाय ज्यादा भाव मुनाफा तो कमाओ ही लो साथ में वो मंडिया का चक्कर सु भी बच जाए लो। आज अपनी फसल ने बठे लेर जाओ भी मंडी में नई भाव मिलिया तो ट्रैक्टर में गाल ट्रोली में वापस ले आओ वो चक्कर कटवा सु बच जाए लो। किसान कहने डायरेक्ट डीलर आओ लो बटासू लेर जाए लो जत्ता में सो दो तय हुई जो और वह दाम भी ना दे दे लो तो बढ़िया दाम मिल जाएगा।
0: अच्छा एक काश्तकार समझदार काश्तकार कद बन सके है वो कौन सो नवाचार अपनावे जिसु की नुकसान की संभावना भी न कम हो जावे।
1: हाँ देखो नुकसान वाली बात हुई ना तो मैं कृषि अर्थशास्त्र को छात्र हो बाके नाते मैं थाना आ बताऊं लो मैं को उद्देश्य यही रहे किसान कने कि किसान को कम से कम इनपुट कॉस्ट आवे मतलब लागत कम से कम और कम से कम लागत का कॉम्बिनेशन में एक संयोजन में ही वो सबसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले ले। तो डीएपी और जी मैं मिश्रित कृषि का बारे में थाने बताया खेती का बारे में एक मैं जी आप गोबर की खाद कैचवा की खाद बना लिया तो ठीक भी प्रकार आपनों डीएपी और यूरिया को खर्चो तो आदो हो ही गो और अपनी जमीन की ताकत भी बढ़ ली
0: जी
1: हाँ। कहीं वजह डीएपी और यूरिया को असर हर सीजन वाइज अपना डालनो पड़ लो 6 महीना तय रचे जबकि गोबर की खाद आज आप खेत में डाल दिया तो 3 साल तय धीरे धीरे पौधा ने मिल लो और अपनी धरती उतरली को जो अपना मारवाड़ी में खाचा भी प्रति हो जाओ जो सहनशील मतलब भी बहुत डाला ला तो ही अपना उत्पादन ले सका था जबकि गोबर की खाद में या कोने आज डाल दिया तो 2-3 साल कहीं धीरे धीरे धीरे धीरे पौधा ने मिलबो कर लो और इन्हें खाचा शून्य बजट और कम लागत वाली आई की स्मार्ट खेती से।
0: अच्छा तो स्मार्ट किसान बनवा के लिए और कहीं भी ने दूर की सोच और कदम उठानो चाहिए
1: नहीं ए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिश्रित खेती और अनुबंध कृषि के साथ में वो जागरूक किसान छे तो सरकारी कृषि योजना को लाभ ले जी हाँ। वर्मी कंपोस्ट को ही कमाए ना अपना नाम आयो तो वर्मी कंपोस्ट बेड की काई बना बने वो छे कि जो किसान अपना अप्लाई कर सके राज किसान साथी पोर्टल का माध्यम से तो भी ने मिल जाए भी को लाभ असिस्टेंट सहायता और दूसरो चीज फसल बीमो हाँ। फसल की बुआई से पहले ही फसल बीमो करवा लेने जी हाँ 100 रुपया की फसल ने बचावा के लिए यदि आप 2 रुपया लगा दें तो वो इन खर्चों को माना लाभ आज छे जो फसल को खराब हो रिच जना अपना साउंड नुकसान से जबकि कम लागत में ही अपना ने जी हाँ गवर्नमेंट या खरीफ की फसल को तो भी ना 2% देना पड़े जे हाँ तो फिर बाद में जी अपना ने फसल को बीमो अपना खराब हो ना प्राकृतिक आपदा तो फसल बीमा फसल खराब हो बाके 72 घंटा के भीतर अपना ने कृषि रक्षक पोर्टल का नंबर छे 14447 वाला सूचना देनी पड़े जे कारणवश किसान नहीं दे पायो तो वो आप अपना नजदीकी कृषि कार्यालय में लिखित में 7 दिन के भीतर दे सके जे
0: जी
1: का मायने भारियो भर कम प्रीमियम तो गवर्नमेंट दे छे आपनो तो कम ही लागे छे
0: जी। अच्छा कई बार अहियां भी होवे काश्तकार की शिकायत रहे कि मैं तो फसल बीमो करवाया पर माने तो मुआवजो को नहीं मिलियो भी को काई कारण वे छे।
1: देखो मैडम सबसे पहलो कारण ओ छे वो छे भाई या तो वो छे जो सूचना समय सु कोन दियो यदि आपना ने पतो ही न चाले लो कोई चीज को भाई ई फसल को ई खेत में और ई टाइम मड़ खराब हो जत भी को बीमो मिलबो बिन मुआवजो मिलबो थोड़ो सो वो हो जाए। दूसरो कारण ओ छे यदि वो किसान क्रेडिट कार्ड ले राख्यो छे तो किसान जी टाइम बीमो करवाओ छे

0: हाँ तो राजू भाई,
1: हाँ जी
0: बहुत ही मीठी सी बावरी लोक रचना तो भाई लोगों तक पूगती हुई,
1: बिल्कुल
0: पर
1: सर।
0: देखो अब कहीं जानकारी भाई लोगों
1: अब
0: तक पूग।
1: मौसम की जानकारी है सर। देखो बाहर देखो मौसम में थोड़ा साफ सी है आज तो, और अधिकतम जो तापमान रही है जयपुर को 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान रही है 25 डिग्री, और कोटा की बात करें तो कोटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम रही है।

0: न्यूनतम रही 25 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर की बात करा तो अधिकतम तापमान रही 38 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रही 29 डिग्री सेल्सियस और देखो बाहर जो मौसम बन रहा है बेस आ तो बरसात की संभावना तो कोई बता रहा है
1: और देखो प्रकृति का रंग है साए कदे बरसात ज्यादा हो जाए कदे कम हो जाए है तो देखो पण देखो राजू भाई अब घड़ी सारो कर रहे के आज का किसानवाणी कार्यक्रम को टेम अठे पूरो हो रही है तो भाई लोग आज का कार्यक्रम सुथे था का भाई प्रभु दयाल वर्मा
0: और राजू ने
1: दो आज्ञा
0: करा राम राम, राम, राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में है। फिल्म है अकेले हम अकेले तुम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

ये गीत है कुर्बानी फिल्म से, आवाज़ नाजिया हसन की है, गीत को इंदिवर ने लिखा है और इस गीत के लिए संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी पप्पी लहरी की। गीत को लिखा था अनजान ने और इस गीत के लिए संगीत दिया था पप्पी लहरी ने।

और लीजिए अब घर फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का है।

ईमानदार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए नरसिंह शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत।

0: या अधिकतम 1,35,000 रुपए तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 80% या अधिकतम 1,20,000 रुपए जो भी कम हो अनुदान दे है। आत्मा योजना अलवर द्वारा जनहित में जारी।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: और अनुदान का लाभ भी उठाए।
1: फवारा सेट, स्प्रिंकलर, सिंचाई संयंत्र के लिए लघु सीमांत SC ST और महिला किसानों को इकाई लागत का 75% और अन्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 70% अनुदान दी है। ये अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर पर ही दे है। आत्मा योजना अलवर द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
8: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
9: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे नरसिंह शर्मा और साथी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाली चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति
5: बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
6: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34

0: ईपीएफ में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़

0: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म डंकी से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आईपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से, आवाज़ें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: बजता ही रहूं।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह, अच्छा शेर है। बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? दुनिया का हर रकम कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा। नहीं
3: लीना, ठीक अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई नहीं, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, अरे क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, मुझे लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ।

चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मेद की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मेद को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम झोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं रहा।

जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, उत्तराज जी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे

0: ना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग. तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में.

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

तुम्हारे बिना ये दिल वीरान हो गया, तुम्हारी यादों का साया मेरा सुकून हो गया, तुम्हारे बिना ये रास्ते अनजाने हैं, तुम्हारे बिना ये दिल बंजारा हो गया।

चांदनी रात तुम्हारे बिना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

तुम्हारे चेहरे पे छाई जुल्फें दिल को छू गईं, तबस्सुम ने जादू कर दिया, तुम्हारी हंसी की खनक एक धुन बन गई, ख्यालों में जो चेहरा था तुम्हारे दीदार से ख्याल एक गीत बन गया।

एक अजनबी दास्तां की तलाश है, एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।

0: खरीदार नहीं हो सकता।
1: जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूं, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ।

0: निकाल दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी।